0: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामान चंद ही लम्हे बाद अब हम आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज सर्विस के प्रोग्राम रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर।
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas

0: बहनों राम राम
1: राम राम, यमुना बहन राम राम।
0: अरे रेनु, आपको भी बोला राम राम। एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ बहनें शिकायत इस बात की कर रही थी कि आप सिर्फ हमें राम राम कहती हैं, जबकि हमारे घर में गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सभी लोग सुनते हैं, जिसमें आपके भाई साहब भी होते हैं, वो भी सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं।
1: तो भाई शिकायत तो सच्ची है।
0: हाँ, तो इसलिए हम दोनों जो है उनसे
1: सभी सभी को बोल देते हैं हमारी तरफ से राम राम। तो चलो, शिकायतें तो खत्म हो गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, शिकायतें खत्म हो गई। और देखो, जो कार्यक्रम हमारा है गृह लक्ष्मी, खास करके हमारी बहनों के लिए ही है, और जो इसमें बहुत सी हम बातें बताते हैं, तो उसमें जब तक परिवार का साथ ना हो, अब राम राम तो वैसे भी करना पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि बिना उनके सहयोग के हमारी बहनें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। विवाह हो गया है, परिवार में है, तो उनका सहयोग होना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल। और जो अभी अभी रेडियो ऑन किया, जिन्हें नहीं पता है कि ये क्या कार्यक्रम चल रहा है, तो हम उन्हें भी बता दें कि भाई आज हर रविवार को याद रखिएगा 12:10 पे हमारा ये गृह लक्ष्मी कार्यक्रम शुरू होता है, जो कि है हमारी ग्रामीण महिलाओं और सखियों पे आधारित। मगर सुनने वाले हमारे श्रोता अगर और भी हैं, जो भाई लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या होगी, है ना। तो 12:10 पर हर रविवार सुनते रहिएगा हमारा ये कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। और आज तो मैं रेनु तंवर इस कार्यक्रम में, मेरे साथ मेरी रेडियो साथी हैं
0: यमुना।
1: तो भाई एक बात बताओ यमुना, आज तुम क्या खजाना लेकर आई हो, कौन सा पिटारा अपने साथ लेकर आई हो?
0: पिटारे ज्यादा तो नहीं बताएंगे, सबसे पहले मौसम की बात करेंगे। पिटारी में बहुत कुछ है, वो थोड़ा सा अभी छुपाई ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले से बताना ठीक नहीं है।
1: धीरे धीरे
0: राज खुलेगा। तो इस समय जो बात करेंगे हम, बरसात की बात करेंगे, जो मौसम बदल रहा है, बरसात आने वाला है, कुछ जगह आ भी चुका है, जैसे बॉम्बे वगैरह में देखोगी तो वहाँ पे रेड अलर्ट जारी हो चुका है, तो बहुत सी जगह तो मानसून बहुत तेजी से आया, अब बहुत जगह तो इंतजार कर रहे हैं बारिश आ जाए।
1: ये मौसम भी ना हमारे मूड की तरह हो चुका है, जैसे कभी हमारा मूड होता है कि हम उदास हो जाते हैं, कभी हम खिलखिला के मुस्कुरा देते हैं, तो ऐसा उदासी मतलब गर्मी और खिलखिलाना मतलब बारिश, तो अगर हम इसको इस तरह से जोड़े तो कितना खूबसूरत लगेगा ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन एक बात और है कि बरसात का मौसम जहां हमें बहुत ही सुहाना मौसम देखने का नजारा देता है, वहीं साथ साथ कुछ ऐसी परेशानियां भी देता है, जैसे अगर हम बारिश में ज्यादा भीग गए तो आंखों में इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बरसात के मौसम में त्वचा में बहुत सी परेशानियां होती हैं, आंखों में बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल। और गर्मी जब बढ़ती है तो हमें देखा है ना, और बारिश के समय में आंखों में जो नमी आती है उससे हमें खारिश शुरू हो जाती है, और अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को रगड़ने लग जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। और हमेशा याद रखें कि आप अपनी आंखों को कैसे कर सकते हैं सही, कि आप ना अगर बारिश में भीग गए और बारिश का पानी अगर आपकी आंखों पर और त्वचा पर चला गया, तो उसको साफ पानी से जरूर धोएं और उसे अच्छे से साफ करके और क्लींजिंग का इस्तेमाल करें अगर वो ना हो।
0: बिल्कुल। और यदि आप कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करते हैं तो उसे हमेशा साफ रखें, और बारिश के पानी में अगर है ऐसी मौका आ गया कि बारिश हो रहा है, तो उसमें आप लेंस को ना पहने तो ज्यादा बेहतर है।
1: और खुद से दवा ना डालें, पहले डॉक्टर की सलाह लें और फिर दवा लें। और गुलाब जल तो वैसे बेहद ही अच्छी बात बोली जाती है कि आंखों में अगर आप डालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो तो हर समय के लिए अच्छा, लेकिन बरसात के मौसम में खास तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और त्वचा का भी ख्याल रखें, वरना त्वचा हो जाएगी आपकी कैसी कि जो हम लगते हैं ना, हम तो वैसे भी औरतें हैं, उम्र अपनी छुपाती ही है और छुपानी भी चाहिए, और हमारी त्वचा अगर इतनी खूबसूरत दिखेगी तो अपने आप ही छुपी हुई दिखेगी, क्यों भाई।
0: बिल्कुल रेनू, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ बहनों से कि जब ये त्वचा आपकी चमकती है, दमकती है, और आपके नैन जो कजरारे हैं वो भी बड़े ही खूबसूरत दिखते हैं, तो सच में

0: ये जो वीर एक गीत जो है रेनु अभी मैं कह रही हूँ, तो जो ये गीत है ना ये लाजमी हो जाता है, इस पे बहुत ही सटीक बैठता है।
1: क्या बात
0: तो
1: है?
0: जब ये चेहरा और ये जब आंखें होती हैं तो कैसा लगता है कोई कैसे बरबस इस चीज को कह देता है। चलिए सुनते हैं इस गीत के माध्यम से।
1: क्यों नहीं।

0: स्वयं की सहायता रेणु स्वयं से करने का एक समूह, मतलब समझ रही हो क्या कहना चाह रही हूँ? स्वयं सहायता समूह की हम बात कर रहे हैं, SHG की बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक और सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है।
1: बिल्कुल, और ये एक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं जो कि विशेषकर महिलाओं को एक स्वैच्छिक कहते हैं ना संगठन प्रदान करते हैं। इसमें हम आपसी सहयोग और छोटी छोटी बचत करके सामाजिक परिवर्तन भी लाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और जो ग्रुप की हम बात करते हैं 10 या 20 महिलाओं का समूह नियमित बचत और समझदारी लगन होशियारी और एक दूसरे के सहयोग करने से फर्श से अर्श तक पहुंच जा सकती हैं।
1: क्या बात है।
0: और अब हम अगर परिवर्तन की बात करें तो जो घूंघट थोड़ा सा है वो उसे ऊपर करके जब गांव की महिलाएं शहर दीवारी से बाहर निकलती हैं और बैंक पर जाती हैं, अपने पैसे को जमा करती हैं, ग्राम सभाओं में भाग लेती हैं, और इतना ही नहीं है ग्राम पंचायत के हर कार्यक्रमों में जाती हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष की बात करें, सरपंच की बात करें, हर जगह अपनी बात को रखती हैं, तो ये जो नजारा होता है ये देखते ही बनता है।
1: बिल्कुल, और इसमें साथ साथ ये देखो सामाजिक जो कुरूतियां हैं उनका भी अंत इसमें किया जाता है। हमारे समाज में ना दहेज प्रथा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयां बहुत हैं, और इन बुराइयों के खिलाफ ये सामूहिक जो ये आवाज है साथ उठाई जाती है, और स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी जागरूकता को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से सामाजिक बैठकों में नेतृत्व करने से महिलाओं का जो आत्मविश्वास है ना वो बढ़ता है, और जो उन्हें पंचायती राज और स्थानीय राजनीति में भाग लेने में भी उन्हें प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण, और सबसे बड़ी बात है अपने में आत्मविश्वास लाना कि हम भी बोल सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं।
1: पहले महिलाएं नहीं सोचती थी,
0: पहले नहीं सोचती थी इस बात को, लेकिन अब जागरूक हो चुकी हैं। तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे जिंदगी की जो भी ये लम्हे हैं इस प्यार को हम बांट लें और थोड़ा सा मनुहार के साथ अपनी जिंदगी बिताएं, क्योंकि ये जो प्यार भरी जिंदगी है बहुत ही अनंत काल तक अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छे मन के साथ हमें आगे बढ़ने का एक मौका देती है।
1: बिल्कुल।

0: जिंदगी के प्यार को हम बांट लेंगे बांट लेंगे जरूर,
1: जरूर।
0: और आज कुछ ऐसी हम बातें करने जा रहे हैं, हमारे बीच में हमारी एक आमंत्रित सदस्य आ चुकी हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कुछ ऐसी बातें घुमा फिरा के नहीं, एक भूमिका में कहेंगे आपसे कि कोई भी अगर बालिका है, चाहे वह गांव में रह रही हो या शहर में, हर बालिका को शिक्षित होना बहुत जरूरी, ये बात है ना रेनू?
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कभी कभी किसी कारणवश, किसी समस्यावश बालिकाओं के इच्छा अनुरूप शिक्षा नहीं मिल पाती, या आधी अधूरी पढ़ाई कर वो चिट्ठी पत्री लिखने लायक बना करके कहते हैं भैया बहुत हो गया, आप विवाह बंधन में बांध दीजिए, अपने घर जाए।
1: ये आज के समय के दौर में भी इस तरह की विचार है, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन इसी बात को और इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए, हमारे ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा में अभिभावकों की क्या भूमिका है, इस पर हमने आमंत्रित किया है सरिता गुप्ता जी, जो कि लेखिका हैं, समाज सेविका हैं और शिक्षिका हैं नई दिल्ली से।
0: बिल्कुल। और आज के इस विषय पर अगर हम देखा जाए तो ये जो बालिकाओं की शिक्षा में अभिभावकों की क्या भूमिका है, इस पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू पर चर्चा होगी, और जिसके लिए जैसे आपने बताया कि इस समय सरिता जी आ चुकी हैं। सरिता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद यमुना जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया
0: जी। सच कहें तो बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं,
1: हाँ,
0: समाज के सभी वर्ग के लोग।
1: बिल्कुल। और सरिता जी, हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि बेटियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है?
2: बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि बेटियां अगर हम कहें तो वो सृष्टि का आधार है।
0: बिल्कुल।
2: पूरा परिवार, पूरा संसार उन्हीं की धुरी पर चलता है। और कहा जाता है कि अगर एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा परिवार शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होता है, देश शिक्षित होता है, राष्ट्र शिक्षित होता है। अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो अक्सर वो नौकरी के सिलसिले को लेकर घर से बाहर चला जाता है, और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अधिकांशतः माँ के ऊपर होती है, महिलाओं के ऊपर होती है। और अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो बच्चों में अच्छे संस्कार डालती हैं, उनको आदर्श सिखाती हैं, नैतिकता सिखाती हैं, और उस तरह पूरे समाज का कल्याण होता है। तो मैं तो बेटियों के लिए यही कहूंगी, शिक्षा बेटी के लिए सर्वोत्तम उपहार, शिक्षा बेटी के लिए सर्वोत्तम उपहार, इस पथ पर चलती रहो कभी ना होगी हार। तो बेटियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, बेटियां देश का आधार हैं।
1: बहुत अच्छी बात लिखी और बोली आपने। ये कितनी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ना बालिकाओं को शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा तुलना की जाती है
0: जी।
1: हम कहते हैं लड़कों को पढ़ाया जाए, लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
2: देखिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे लगता है अब उनका अनुपात कम हो रहा है, क्योंकि लोग बेटियों की शिक्षा को लेकर उतने ही जागरूक हैं, उतने ही सतर्क हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत लोग हैं जो अभी भी रूढ़िवादिता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो उनको ये समझना होगा कि अगर हम अपने बेटे का विवाह करते हैं तो उसके लिए हम शिक्षित बहू चाहते हैं, और शिक्षित बहू कहाँ से आएगी जब हम बेटियों को शिक्षा देंगे। तो इसीलिए हमें अपने विचारों को विस्तार

0: देना है, अपने विचारों को बढ़ाना है कि समाज में, देश में बेटी हो या बहू हो, दोनों को शिक्षित हम तभी पा सकते हैं जब हम बेटी को शिक्षित करेंगे।
1: कुल मिला के अगर सच कहें तो कुछ लोगों की मानसिकता, कुछ अभिभावक की मानसिकता बदली है और कुछ की बदलने की जरूरत है। तो जो ये चलन चला है कि हाँ शिक्षा देना है, शिक्षा नहीं देना है, ये दोनों पहलू है, लेकिन अब कुछ थोड़ा थोड़ा बदला हो रहा है जैसे कि आप बता रही हैं। और एक बात और है, यहाँ हर अभिभावक के लिए कहना चाहेंगे कि क्या अभिभावक अपनी बेटियों की शिक्षा को परिवार का एक बोझ मानते हैं या भविष्य के निवेश के रूप में देखते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा है कि लोगों की विचारों में बदलाव आ रहा है, लेकिन हाँ अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की और बालिकाओं की बात करते हैं तो आज शहरों में तो बहुत सारे कोचिंग हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, वाहन की सुविधाएं हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं, और उस पे अगर माता पिता आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो वो सोने में सुहागा है, हर विचार को आकार देने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती। हाँ गांव की अगर हम बात करते हैं, गांवों में निश्चित रूप से अब सभी सुविधाएं वे पहुंच गई हैं जो शहरों में हैं, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा रिमोट एरियाज की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर बिजली की, पानी की सुविधाएं हैं, लेकिन वो उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है जितनी शहरों में है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों की बात आती है तो विद्यालय इतने दूर हैं कि हम बच्चियों को आजकल जिस तरह के दुष्कर्म, बलात्कार की घटनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं, तो हम बेटियों की अस्मिता की तरफ से भी काफी चिंतित होते हैं और हर समय बेटी को हर जगह भेजने के लिए हमारा मन स्वीकृति मतलब नहीं देता,
1: चाह करके भी नहीं पढ़ा पाते हैं। अगर दूर एरिया है तो वहाँ पे सोचना पड़ जाता है कि हम क्या करें, कैसे करें।
2: जी, तो इस उस पे तो हम ये भी कह सकते हैं सरिता जी कि अगर शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा तो है ही, तो एक हम किस तरह से लड़की अपने आप को कैसे बचाव कर सके, उस तरह की शिक्षा भी मिलना
0: जी, उसके लिए आजकल ताइक्वांडो है बच्चों के लिए, सेल्फ डिफेंस की जो चीजें हैं वो बच्चियों को सिखाई जा रही है। और अच्छी बात ये है कि आजकल हर स्कूल ने इसको एक विषय के रूप में निर्धारित कर दिया है और निश्चित कर दिया कि हर बच्ची को टाइकंडो या सेल्फ डिफेंस की शिक्षा लेनी जरूरी है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चियों को भी अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए और उस भरोसे में परिवार की महती भूमिका होती है, क्योंकि परिवार ही हमारे आत्मविश्वास को बुलंद करता है और परिवार ही हमारे आत्मविश्वास को खंडित कर देता है।
2: बिल्कुल। और एक बात और सरिता जी, मुझे लगता है कि हम बालिकाओं को पढ़ाने की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर अभिभावक अपने लड़कों को भी शिक्षा इसी तरह से दें ताकि वो महिलाओं की और बालिकाओं की इज्जत को दे पाए वो, तो उस ओहदे पर अगर दिमाग सबका चले तो शायद ये जो नकारात्मक चीजें हमारे समाज में, कुरूतियां जो बढ़ रही हैं वो कम हो जाएंगी। आप सही कह रहे हैं
0: जी।
2: तो अब हम मनोरंजन के पास भी आ जाते हैं, आप हमें जानकारी तो दे ही रही हैं, साथ साथ मनोरंजन भी हो जाता है।
1: और हम बताना चाहेंगे रेनू की जो अभिभावक होता है ना, एक भरोसा है तो होता है बच्चों का अपने अभिभावक पर, क्योंकि सब कुछ वही होते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और भरोसा नहीं टूटने देना चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि हर मुश्किलों को पार करके अपनी बालिकाओं को हर हाल में शिक्षित करें।
2: और इसी पर सरिता जी की फरमाइश हम पूछ लेते हैं, इसी पर अगर आपकी कोई है।
0: जी बिल्कुल, लता जी का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है एक तू ही भरोसा है, तो अगर हम वो सुन ले तो हमारे श्रोताओं को भी आनंद आए।
1: बिल्कुल, ख्याल रखेंगे आपका।

0: बिल्कुल हमारा भरोसा है अपने अभिभावक पर है, और खास करके अगर हम बात करें इस समय तो एक शिक्षित ग्रामीण बालिका अपने परिवार और समाज का जो स्तर है वो कैसे ऊपर उठा सकती है, इसके बारे में सरिता जी आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया यमुना जी आपने, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं, निश्चित रूप से उनका दोहरा दायित्व होता है, उन्हें अपनी संस्कृति को भी सींचना है और बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि ग्रामीण महिलाओं में जो भी महिलाएं शिक्षित हैं उन्हें अपने परिवार को अपने बच्चों को तो शिक्षित करना ही है, लेकिन आसपास की महिलाओं को जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी समझाने का ये दायित्व बनता है कि जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है, यदि हम बदलते हुए समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमारा समय निकल गया है लेकिन हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, शिक्षित करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, सशक्त बनाना है। तो माता जो होती है, माता पहली शिक्षिका होती है ऐसा कहा जाता है, ये सभी जानते हैं, परिवार पहली पाठशाला होता है और माता जो है पहली शिक्षिका होती है, और जो पहली शिक्षिका के द्वारा कोपल रोप दी जाती है, बीज बो दिया जाता है बच्चों के मन में, वही वटवृक्ष बनकर जीवन भर उन्हें सशक्त बनाता है और उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है।
2: जी, तो अगर हम बात करें गांव हो या शहर, हर मतलब जगह की बालिका शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, सरकार इसके लिए क्या पहल कर रही है?
1: सरकार की अगर हम बात करें, आज सरकार बहुत ही ज्यादा महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रयास कर रही है, क्योंकि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो हमारा नारा है वो दुनिया के कोने कोने में है और जिसका हमने प्रभाव भी देखा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि सुकन्या योजना, जिसमें बच्चों बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत कम निवेश में अच्छे ब्याज पर जो है अभिभावकों को उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आपने बहुत सारी योजनाएं सुनी होंगी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये जो है ग्रामीण जो बालिकाएं हैं उनको हॉस्टल भी प्रदान करती है और खाना पीना भी प्रदान करती है, शिक्षा भी प्रदान करती है। तो ऐसी योजनाओं को लेकर अभिभावकों को जागरूक होना चाहिए कि सरकार हमारे लिए इतने प्रयास कर रही है तो हमें भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, और सबसे बड़ी बात हमें अपनी बेटियों की योग्यता को पहचानना बहुत जरूरी है। यदि हमारी बेटी के अंदर वो स्पार्क है, वो

0: क्षमताएं हैं, तो हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहारा बनना चाहिए। और दंगल मूवी तो आप सभी ने देखी ही है कि किस तरह से जो है एक पिता अपनी बेटी के सपनों को पूरा करता है, अपने सपनों को पूरा करता है। जो बच्चे होते हैं वो माता पिता की खुली आंखों में बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, और हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी आंख का तारा जग की आंख का तारा बने। और अब हम बहुत अच्छा सा प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। हमारे गांव को ही आया है, जब गांव की बात
1: आपकी फरमाइश है और हमें सुनाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोता भी आनंद लेंगे उसका।
1: चलिए आपकी फरमाइश को हम पूरा करते हैं
0: जी।

0: वरदा जी एक हम आप पूछना चाहेंगे सवाल कि यदि माता पिता स्वयं पढ़े लिखे ना हो
1: जी
0: तो वो कैसे अपनी बेटियों को शिक्षा में सकारात्मक सहयोग दे सकते हैं।
1: देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और अक्सर अगर आप देखें समाज में हम अवलोकन करते हैं तो अक्सर उन्हीं माता पिता के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने की भावना ज्यादा होती है जो स्वयं अशिक्षित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है और शिक्षित ना होने के कारण उन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसे माता पिता निश्चित, एक तो आजकल संचार के बहुत सारे साधन हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, रेडियो है, अखबार है, तो उसमें जो है अपने आसपास के माहौल में जो नई योजनाएं निकल रही हैं बच्चों की शिक्षाओं को लेकर, क्योंकि अक्सर गांव में कितने ही लोग सशक्त हों लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव मैंने महसूस किया है, तो आर्थिक अभाव के कारण अक्सर माता पिता अपने सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को साकार नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसमें विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए लेकर सरकार बहुत सक्रिय है, उनको फ्री आवास दे रही हैं, भोजन दे रही हैं, पुस्तकें दे रही हैं, दिल्ली जैसे शहरों में भी 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में पेरेंट्स को अपने आसपास के जो शिक्षित लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करते रहें और अपने बच्चों के लिए कैसा राजपथ तैयार करें कि उन्हें जीवन में ठोकरें ना खानी पड़े।
2: लेकिन अभी भी थोड़ी सी समस्या है, कुछ ऐसे अभिभावक हैं जो बेटियों को बिल्कुल पढ़ाना नहीं चाहते और पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत सीमित दायरे में कि 7वीं 8वीं पास कर लिए, चिट्ठी पत्री लिखने लायक हो गए, जरूरत क्या है, आखिर जाके घर पे काम ही तो करना है वहां पर। तो ऐसे अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए सुधार की दृष्टि से क्या बात कहना चाहेंगे?
1: देखिए ऐसे अभिभावकों को सबसे पहले ये समझना होगा कि बेटियां सिर्फ जो हैं परिवार को चलाने की मशीन नहीं है, वो पूरे समाज को सशक्त बनाने में महती भूमिका निभाती हैं। जैसा कि मैं बार बार हमेशा कहती हूँ, क्योंकि शिक्षा

0: सुनता हूँ कि जो है एक अगर लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और परिवार
1: दो परिवार शिक्षित होता
0: दो परिवार शिक्षित होते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और यदि हम चाहते हैं कि बेटियां शिक्षित हों, हमारे घर में शिक्षित बहू आए, तो हमें जो है बेटियों की शिक्षा को लेकर आसपास के वातावरण से नई नई जानकारियां लेने के लिए सशक्त होना होगा, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। अगर जो है जीवन रुक जाएगा, और जीवन आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि घर बैठे हम आज व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लड़कियां ट्यूशंस दे रही हैं, नई नई कलाएं सीख रही हैं, जिनको लोकगीत आते हैं, ढोलक बजानी आती है, ये भी एक कला है, ये भी एक शिक्षा का ही पाठ है। तो ऐसे में हमें जीवन को निरंतर गतिमान बनाए रखना है, और जीवन चलने का नाम है। और इसी
1: आपके इशारे को मैं समझ रही हूँ, आपकी इशारा कर रही हूँ जीवन चलने का नाम है, आप सुनना चाह रही हैं।
0: जी जी बिल्कुल, आप बहुत ही
1: तो जाते जाते हमारे इस कार्यक्रम में आप आई और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमारे ग्रामीण महिलाओं को भी, मुझे लगता है जो हमारे श्रोता हैं, है ना यमुना जी, तो जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने भी काफी खास जानकारी भी प्राप्त की होगी। तो आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सरिता जी लेखिका है, शिक्षिका भी है, और जाहिर सी बात है आप समाज में अपनी भूमिका अदा कर रही है। तो सरिता जी आपको कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आपकी फरमाइश का ये वाला गीत, जीवन चलने का नाम, बहुत सुंदर।

0: यमुना भारत सरकार द्वारा कई भविष्य के लिए, मतलब बेटियों के भविष्य के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने बनाई हैं, और ऐसी कई योजनाओं में जैसे एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, है ना। और उसमें क्या है कि माता पिता जो हैं, जो अभिभावक हैं, अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं, और दो बालिकाओं के लिए ये खाता खोला भी जा सकता है, ये भी एक अलग से छूट उनको प्रदान की जाती है।
1: और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब खाता खोलते हैं तो 250 रुपए न्यूनतम कम से कम और 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना जमा कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि दो बेटी, जैसे आपने कहा कि दो बेटियों के लिए किया जा सकता है, और एक बात और है कि जब 50% जब पूरा पैसा जमा हो जाता है या नहीं भी जमा होता है, कुछ दिनों तक का जमा होता है, तो बेटी जब 18 वर्ष की हो जाती है या वो 10वीं पास कर लेती है और शिक्षा के लिए, आगे उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो जितना आप जमा किए उसमें से 50% आप लेकर के उस बच्ची की शिक्षा पर आगे खर्च कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है ये कि 50% आप पा जाएंगे, ऐसा नहीं कि ब्लॉक हो गया बिल्कुल, अब इतने साल में ही मिलेगा, मैच्योरिटी होने पर मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जो अधिकतम आपको मैंने बताया 1.5 लाख रुपए और न्यूनतम 250 रुपए शुरू किया जा सकता है। और इसके लिए जो सबसे जरूरी कागजात है वो बच्चे का जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड अगर बच्चे का बना है तो ठीक, नहीं बना है तो माता पिता
0: के
1: आधार कार्ड से भी काम चल सकता है
0: बिल्कुल। और ये खाता बेटी के 21 साल पूरे होने पर या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी के होने पर भी हम कहते हैं ना मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और इसका टैक्स का लाभ भी मिलता है।
1: बिल्कुल, ये छूट रहता है, इनकम टैक्स से छूट मिला रहता है इसमें।
0: हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं इसमें, डाक खाने में जाकर यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाकर भी, किसी भी बैंक में हो, सभी जगह आप ये खाता खोल सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप खाता खोल पाएंगे।
1: और सबसे अच्छी बात है रेनू की, जितना ब्याज दिया जाता है हर सेविंग पे उससे कहीं ज्यादा इस पे ब्याज दिया जाता है,
0: तो ध्यान
1: सबसे ज्यादा।
0: अच्छा, तो ध्यान
1: इसमें सेविंग करना मतलब आप समझ लीजिए बच्ची का भविष्य आप बना रहे हैं एक तरीके से, और सबसे ज्यादा आप इस पे ब्याज पा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और साथ साथ आज वीरांगना क्रम में भी कुछ बात कर ले।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज जैसे स्वतंत्रता और आजादी में जहाँ महापुरुषों की बलिदान की गाथा हम सुनते हैं, आज हमारी महिलाओं में भी कई ऐसी महिलाएं हैं, वीरांगना हैं, जिन्होंने अथक बलिदान की वजह से हम आज आजादी की सांस ले पा रहे हैं। और उसी में आज हम बात कर रहे हैं हमारी रानी वेलु नचियार की, जो कि भारत की पहली उन शासकों में थी जिन्होंने 1780 में यानी कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लगभग 77 साल पहले एक बेहतरीन और शक्तिशाली ब्रिटिश सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। नारी शक्ति का वो मूल्यांकन करने वाली भारत की प्रथम शासकों में से एक थी जिन्होंने सेना में सबसे बहुत प्रथम कहते हैं ना अनुशासित और घातक महिला सैनिक पलटन उठाई थी। तो और फ्रंट लाइन में कहते हैं ना कि हम चाहते हैं महिलाएं ना हो, लेकिन उन्होंने ये विवाद को भी खत्म कर दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं रानी वेलु नचियार की।
1: और सबसे बड़ी बात है रेनू की, वो क्योंकि एक इकलौती संतान थी इसलिए उन्हें एक राजकुमार की तरह पाला गया था, और बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और देखा जाए तो हर युद्ध में वो प्रशिक्षित थी बिल्कुल।

0: तमिल, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू जैसी कई भाषाओं की ज्ञाता भी थी। और सच कहें तो 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह शिवगंगा के राजकुमार मुथुवदुगनाथ पेरिया उदिवेयर से हुआ था और 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने लोहा लिया। तो ये कहा जाता है ना कि बहादुर महिला थी अपने जीवन में।
1: जी, और जाते जाते इनके बारे में बस इतना कहेंगे कि इन नचियार मेमोरियल का उद्घाटन इनके उसमें किया गया था, उनकी वीरता को सम्मान देते हुए दिसंबर 2008 में एक डाक टिकट जारी किया गया था और 2014 में तमिलनाडु सरकार ने शिवगंगा वीर में मंगल वेलु नचियार मेमोरियल का उद्घाटन किया और उसी वर्ष दुनिया के पहले आत्मघाती हमला करने वाले अंजाम देने वाले कमांडर युकिली की याद में भी शिवगंगा में एक स्मारक बनाया गया। और जाते जाते जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों को वीरों का बाना पहनाया, जिसने आजादी लेने की एक निराली राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया, ऐसी वीरांगना को हमारा शत शत नमन
0: नमन है और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।
2: सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए।

बेड़ो झंझना।

0: चलते चलते ही रेनू अपने कार्यक्रम का हम पता बता देते हैं। गृह लक्ष्मी कार्यक्रम कृषि एवं गृह कांश कमरा नंबर 610 नौ प्रसारण भवन आकाशवाणी नई दिल्ली पिन कोड 1100001। हमारा जो ईमेल है एड्रेस वो नोट कर लें, feedback@fnh.gmail.com। और आपको चलते चलते ये भी बता दें कि अगला जो हमारा कार्यक्रम शाम को प्रसारित होगा वो होगा लोकरंजनी ग्राम संसार और कृषि जगत, जो 5:10 से लेकर के 7:30 तक चलेगा।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पारासर। कार्य सुनने सभी बहनों को हमारा राम राम। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने

0: भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material seen in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to CSEM. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. Earlier, the ministry had taken cognizance of reports that Instagram showcased certain objectionable material that promoted child sexual abuse and issued directions to officials to seek a response from Meta. Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1:10 और 16 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

नमस्कार दोस्तों, इंद्रप्रस्थ चैनल के इस खास फिल्मी सफर में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यादगार फिल्म की दुनिया में, एक ऐसी फिल्म जिसने दोस्ती को नई ऊंचाई दी, प्यार को नई गहराई दी और शायरी को एक नई पहचान। आज की हमारी फिल्म है साजन। साल था 1991।

हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी, लेकिन उसी साल एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए और संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने लगी। एक तरफ थे संजय दत्त, गंभीर संवेदनशील जो दर्द को आंखों से बयां करते थे, दूसरी तरफ थे सलमान खान, युवा चुलबुले और आकर्षक अंदाज वाले हीरो, और इनके बीच थी भारतीय सिनेमा की धड़कन माधुरी दीक्षित। तीनों की ये जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ आई और ऐसा जादू हुआ कि फिल्म आज भी रोमांटिक फिल्मों की सूची में बड़े सम्मान से याद की जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत किसी को कहा जाए तो वो है इसका संगीत। कहते हैं कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसकी ऑडियो कैसेट्स की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो चुकी थी और इसकी वजह थी संगीतकार नदीम श्रवण की मधुर धुनें और गीतकार समीर के दिल को छू लेने वाले शब्द। तो क्यों ना शुरुआत उसी गीत से की जाए जिसने लाखों दिलों की धड़कनें तेज कर दी थी।

वाह क्या गीत है। दोस्तों क्या आप जानते हैं ये गीत शुरू से फिल्म का हिस्सा ही नहीं था। जी हाँ, जब फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी तब निर्देशक लॉरेंस डिसूजा को लगा कि फिल्म में एक ऐसा रोमांटिक गीत होना चाहिए जिसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित को की मासूमियत दिखाई जा सके। फिर क्या था, नदीम श्रवण ने धुन बनाई, समीर ने शब्द लिखे और एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका यज्ञिक की आवाज ने इसे अमर बना दिया। और अब जिक्र उस कहानी का जिसने इस फिल्म को अमर बना दिया। लेकिन कहानी ज्यादा लंबी नहीं, क्योंकि हमारा मकसद पूरी फिल्म सुनाना नहीं बल्कि उस फिल्म की खूबसूरती को महसूस कराना है। कहानी है दो दोस्तों की, एक का नाम अमन, दूसरे का आकाश। अमन शारीरिक रूप से कमजोर है लेकिन उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसकी शायरी उसे लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचा देती है। वो सागर नाम से कविताएं लिखता है लेकिन दुनिया नहीं जानती कि उसका असली नाम, दुनिया नहीं जानती कि असली सागर कौन है। दूसरी तरफ है आकाश, जो जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखता है, हंसमुख, शरारती और हर किसी की मदद करने वाला। फिर कहानी में आती है पूजा, जो सागर की शायरी की दीवानी है लेकिन सागर को पहचानती नहीं। यहीं पर कहानी को देते हैं एक विराम और सुनते हैं इस फिल्म का प्यारा सा गीत।

इस प्यारे से गीत के बाद फिल्म साजन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दो दोस्तों के बीच एक गलतफहमी का आना और फिर एक ऐसा त्याग जो कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। अमन अपने प्यार से ज्यादा अपने दोस्त की खुशी को इम्पोर्टेंस देता है और आकाश जब सच्चाई जानता है तो वो भी दोस्ती के लिए अपने प्यार का त्याग कर देता है। लेकिन प्यार आखिरकार अपने सच्चे साथी तक पहुंच ही जाता है और इसी खूबसूरत संदेश के साथ फिल्म का अंत हो जाता है, यानी दोस्ती भी जीत जाती है और प्यार भी। तो आइए सुनते हैं फिल्म साजन से एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद आपको पता चल ही गया है कि आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से आपके पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आज की फिल्म है साजन और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त नंदा इस्सर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ip.radio.delhi@gmail.com। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, ip.radio.delhi@gmail.com। तो बने रहिए हमारे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।

0: पार्टी, पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं?
1: नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ब्रेक के बाद दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और हमारी आज की फिल्म है साजन। अब बात करते हैं फिल्म साजन के कलाकारों के अभिनय की। सबसे पहले बात करते हैं सुपरस्टार संजय दत्त की, जिन्होंने अपनी आंखों की खामोशी, चेहरे के भाव और ठहराव से अमन के दर्द को इतना जीवंत कर दिया कि दर्शकों का दिल भी उसके साथ भर आता है। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। अब बात करते हैं सलमान खान की। 1991 में सलमान खान अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, लेकिन आकाश के रोल में उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। सलमान की सहज मुस्कान, मासूम शरारत और दोस्ती निभाने का अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया। और अब बात करते हैं उस अभिनेत्री की जिनके बिना साजन फिल्म की कल्पना अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। पूजा के किरदार में माधुरी ने मासूमियत, गरिमा और संवेदनशीलता का ऐसा सुंदर मेल दिखाया कि दर्शक उनसे जुड़ते चले गए। और भी बातें बताऊंगी फिल्म से जुड़ी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत।

मल्लिका इनके साथ हैं, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। ये मेल हमें भेजा है गांव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से। और अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं सुनील पाठक जी का। इनको ये प्रोग्राम और कहानी बहुत अच्छी लग रही है। अपने इन्होंने लिखा है कि फिल्म अपने जमाने की खूबसूरत फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा संदीप पाठक जी, आपकी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल हमें मिला है विजय सुरालकर का, मोताला महाराष्ट्र से। इनके साथ इनके परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल हमें मिला है गुरमीत सिंह जी का। ये मेल हमें मिला है साउथ एक्सटेंशन से। और अगला संदेश की तरफ बढ़ते हैं। अगला संदेश है सतीश अनेजा जी का। साजन फिल्म बेहद खूबसूरत हिट फिल्म रही, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेल हमें मिला है चंडीगढ़ से। और एक और मेल शामिल करना चाहूंगी हीरा मणि वर्मा जी का। इन्होंने इनको कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। हीरा मणि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुनते हैं फिल्म का एक आखिरी गीत।

आपने ये बता दें कि साजन के साथ साजन फिल्म को 37वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 11 श्रेणियों में नामांकन मिला। उस समय ये अपने समय की एक बड़ी उपलब्धि थी। फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया। निर्देशक लॉरेंस डिसूजा को बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया और इसी तरह से संजय दत्त माधुरी दीक्षित को भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम एक ही फिल्म से संपन्न होता है। अपनी दोस्त नंदा इस्तर को अनुमति दीजिए अगले प्रोग्राम में आपसे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: खबरों दिस बुलेटिन नाल मैं अमन देव, पहला खास खबरां। सरकार ने तरल कुदरती गैस LNG की सप्लाई ते लागू हंगामी पाबंदियां हटा लिया ने। खेतीबाड़ी ते देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी कानून सफलता नाल लागू होने से खुशी जाहिर करदिया कहा कि अगले 5 सालों च इस कानून तहत 7.5 लाख करोड़ रुपए तो वधा निवेश किया जाएगा। सरकार ने सोशल नैटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम से पेड़ इश्तहारों में बच्चों के जिनसी शोषण से अश्लील समगरी के प्रसार को लेकर मैटा को सख्त चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तो 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। प्रसिद्ध पांडवानी गायिका से पद्म विभूषण नाल सम्मानित तीजन भाई का देहांत हो गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने तरल कुदरती गैस LNG की सप्लाई से लागू हंगामी पाबंदियां हटा दित्तियां ने। पछमी एशिया के संघर्ष में जंगबंदी तो बाद हॉर्मुज स्ट्रेट राही कुदरती गैस की सप्लाई मुड़ शुरू होने तो बाद फैसला लिया गया है। पेट्रोलियम से कुदरती गैस मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि कुदरती गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 में सोध की गई है। इस सोध तहत हंगामी प्रबंधों को हटा दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट राही LNG सप्लाई में रुकावटों तो बाद इस साल मार्च में जरूरी वस्तुओं संबंधी कानून तहत हंगामी आदेश जारी किया गया। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस गल से खुशी प्रगट की है कि विकसित भारत गरंटी फॉर रोजगार ते आजीविका मिशन ग्रामीण 2025-1 जुलाई तो सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस मिशन तहत राज्यों 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। उन्होंने कहा कि जिथे मनरेगा लागू करने 3 सालों तो वध समा लग्या उत्थे विकसित भारत जी राम जी नूं सिर्फ 1 दिन देश भर में लागू कर दिता गया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के दृष्टिकोण को तेजी से लागू करने इस एक्ट तहत अगले 5 सालों में 2,86,000

0: युवराज सिंह चौहान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 इस महीने की पहली तारीख से नाफिज हो गया है। वजीर मौसूफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजकूरा मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद मंजूर की और इसे जारी किया। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम एमजी नरेगा की जगह विकसित भारत जी रामजी एक्ट को कामयाबी के साथ इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि एमजी नरेगा पर अमल दरामद में 3 साल लग गए थे, जबकि विकसित भारत जी रामजी एक्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 1 दिन में ही नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि इस एक्ट के तहत अगले 5 साल के दौरान 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सरमाया लगाया जाएगा, ताकि विकसित भारत के नजरिए की रफ्तार में तेजी लाई जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इक्तसादी राबते और ज्यादा मजबूत होंगे। जामे क़लीदी साझेदारी के बारे में सफीर मौसूफ ने कहा कि इस शराकतदारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है, इसके अलावा ताल्लुकात में और ज्यादा इक्तसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर इश्तिहारात में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और ज्यादती से मुतालिक मवाद के सिलसिले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम को ये हुक्म दिया है कि उन सभी इश्तिहारात और मवाद को हटाया जाए जिनके जरिए बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने मेटा से 7 दिन के अंदर अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। सरकार इस बात का जायजा ले रही है कि आया मजकूरा प्लेटफॉर्म ने भारत के मुतालिका सेफ्टी रहनुमा उसूलों पर अमल किया है या नहीं। डिजिटल कवानीन के तहत भारत में फहाशी और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से वाबस्ता मवाद की तकसीम एक फौजदारी जुर्म है। इससे कबल वजारत ने इन इत्तलात का नोटिस लिया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा काबिले एतराज मवाद दिखाया गया है जिससे बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने मेटा से जवाब तलब करने के लिए मुतालिका अहलकारों को हिदायत भी जारी की थी। छत्तीसगढ़ की मारूफ पंडवानी गुलुकारा और पद्म विभूषण से सरफराज तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थी और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आज अलसुबह 3:15 बजे के करीब आखिरी सांस ली। अपनी पुरअसर आवाज, स्टेज पर शानदार कारकर्दगी और गायकी के मुनफरिद अंदाज के सबब तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ पूरे भारत बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी एक नई शनाख्त दी।

भारतीय लोक आर्ट के लिए उनकी गैर मामूली और गिरां कद्र खिदमात के एतराफ में उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सरफराज

0: किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेकर और वजीर आला विष्णु देव साय ने भी तीजन बाई के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है और लोक रिवायात को महफूज रखने, नीज छत्तीसगढ़ की सकाफती विरासत को आलमी मंजरनामे तक ले जाने में उनके गिरा कदर रोल की सताइश की है। डॉक्टर तीजन बाई की आखिरी रसूम दुर्ग जिले में उनके आबाई गाँव गनियारी में आज शाम पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान को अवाम और मुल्क की खिदमत के तई उनकी लगन और अज्म के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हौसला अफजा रही है। यात्रा शुरू होने के पहले दो दिन के दौरान 32,313 अकीदतमंदों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने और कहीं कहीं इंतहाई मूसलाधार बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और औसत बारिश होने की पेशगोई की गई है। खवातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार छठी कामयाबी हासिल की थी। खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने अवनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहारात हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। और छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Government withdraws emergency curbs on natural gas supplies following resumption of LNG shipments through Strait of Hormuz. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan releases 25,000 crore rupees assistance to states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act. Center orders Meta to remove child abuse ads from Instagram, seeks reply in 7 days. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh Tijan Bai passes away. President, Vice President and Prime Minister express grief over her demise. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Central Maharashtra and Odisha today. And in ICC Women's T20 World Cup Finals, England to face Australia in London this evening. Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act after disruptions to LNG shipments through the Strait of Hormuz. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Viksit Bharat's Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today released the first installment, mother sanction, of over 25,000 crore.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें

0: ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG राम जी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि VBG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध 2 प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत के मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
3: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
4: अच्छा, जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना लेने सावन में।
2: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: डॉक्टर साहब तो से पहले बुढ़े मुठोर राजी बोझे दा से कुंड ने सजार रो की अनि केटारेक थे ने मरस या ने बीमारी अनि अनि जोग बिल जोनी सुबारे तारीख मेहरबानी राजी बो
1: जनाब तो रजा जो जैसे कि कॉजेस रजा ब्लाइंडनेस और प्रिवेंटेबल कॉज नहीं बड़े अगर टाइम हुए रहे थे प्रिवेंशन होनी वो आधी टाइम ली इंटरवेंशन अगर की तो जैसे कि तो रजा जो कैटरेक्ट है बड़ा ग्लूकोमा एनो बड़ा यानी जो रिफ्रेक्टिव एरर्स है ना जो डायबिटिक रेटिनोपैथी ना जो तो थोड़ा सा जो कैटरेक्ट को बारे अगर जैसे डिस्कस आज
0: बिल्कुल
1: हम
0: बिल्कुल
1: तो
0: कैटरेक्टो बारे राजी कुछ
1: जो जो कैटरेक्ट तो सबसे सबसे कॉमन कंडीशन बिल जो ब्लाइंडनेस हो इंडिया जगह और वर्ल्ड में भी इवन की वर्ल्ड में भी या इंडिजियस सबसे कॉमन नियरली इंडिजियस 62% ब्लाइंडनेस जो है कैटरेक्ट वजह भी जो तो सबसे कॉमन है नहीं तो आप कितना इम्पोर्टेंट इस चीज का दे सकते हैं हम इसके
0: बिल्कुल
1: तो असल में जो बेनेजू की कैटरेक्ट है जो बेनेजू की नॉर्मल जो लेंस जो नॉर्मल लेंस छो अजर लेंस छो अरु लेंस हूँ सो नॉर्मल क्लियर है नो
0: ठीक
1: दल वो जब एज बढ़ाए बेनी इंसान ये 40-50 साल जब पहुंच जाता है इंसान तो सो लेंस जो है क्लाउडिंग हो क्योंकि उसमें प्रोटीन जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसकी वजह से लेंस क्लाउडी हो जाता है
0: सही
1: उसी वजह जो बेनेजू इंसान रहे सिम्टम्स पैदा बना रहे इंसान सिम्टम्स जो जो पैदा बना एक तो धुंधला पशी जो इंसान रहे
0: अच्छा कम ले बिन
1: आद
0: ले करे
1: जी जी कम ले बहनों पशी कम पशी फॉगी जैसे कि हम फॉगी वेदर में जब हम देखते हैं आसपास तो कैसा दिखता है सफर वो
0: अच्छा
1: मतलब
0: अच्छा
1: धुंधला दिखते दिखने लगता है या
0: ठीक
1: तो लाइट तेज लाइट में सेंसिटिविटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ब्राइट लाइट की तरफ से या मान लो फॉर एग्जांपल कलर एक ब्राइट कलर फॉर एग्जांपल किसी कलर को देख रहे हैं ब्राइट कलर को देख रहे हैं उस बंदे को ब्राइट वो कलर रियल ब्राइट नहीं दिखेगा सो फेड वो पचीजन कलर फेडिंग में अगर कनु का इंसान रहे 40-50 साल हुंट है अनाउ सिम्टम्स अगर पैदा बिना धुंधलापन कलर फेडिंग भी नहीं तो
0: ठीक
1: इससे ऑप्थेलमोलॉजिस्ट ये तक कंसल्ट होनी जरूरी भी क्योंकि
0: जो एक सवाल
1: हो सकता है
0: अपनों अनु
1: जो
0: कैटरेक्ट चुने बामला जब बेनो दा जारे मनुष्य हो या जवान हो जाए कैसे बेन जो अनु कैटरेक्ट
1: जो
0: फैलते
1: एक्चुअल
0: हैं
1: आप जो हैं कि अनसे अलग अलग कैटरेक्टर होगा अलग अलग कॉज ही है ना छोड़ बोलोगे बोनी वार है अच्छा मान लो फैमिली हिस्ट्री अगर है तो सजावरी बोनी चांस ज्यादा भी नहीं एज रिलेटेड नॉर्मली नॉर्मली एज रिलेटेड जो भी नहीं जो नॉर्मली का अगर नहीं मिलते तो नॉर्मली लेंस धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट लेंस हूँ धीरे धीरे एक ब्राइजू सचू एज रिलेटेड का उसके अलावा भी मान लो अगर ट्रॉमा हो गया आई को ट्रॉमा की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकते हैं जो तो रीजन हम बोल सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है या कंजिनेटल भी हो सकता है बच्चे को ठीक है या हम बोल सकते हैं किसी को मेडिकल कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है इससे वजह का बोन चांस है जो अच्छा तो आई इंजरी भी जैसे ट्रोमेटिक कैटरेक्ट है ना जिन से बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल जो जो बाहर काम करते हैं सन एक्सपोजर में ज्यादातर काम करते हैं जो वर्कर्स होंगे या जो भी होंगे जो काम करते बाहर उनको ज्यादा जो है रिस्क होता है कैटरेक्ट डेवलप होने का एज कम्पेयर टू जो अंदर काम के क्योंकि यूवी रेडिएशन यानी जो सनलाइट का जो यूवी रेडिएशन होती है वो जो है डैमेज करती है लेंस को तो वो एक फैक्टर हो तो वो भी एक जल्दी जल्दी वो कराएगा लेंस को डैमेज कराने में हेल्प इसीलिए बाहर जो ज्यादा काम करते हैं उनको सनग्लासेस पहनने की बहुत जरूरत है और उसी तरह से डायबिटीज अगर किसी को है तो उसको कंट्रोल करके रखने की जरूरत है और कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है कुछ दवाई जैसे कि स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं दवाई तो उनकी वजह से भी हो सकता है
0: ठीक ठीक बिल्कुल डॉक्टर साहब तो अनि कैटरेक्ट बीमारी थी अच्छो तो से अगर बेसु रे छो नहा जो अनुमार जो हो कोई बचाई छो नहा रचोक छो नहा तो प्रिवेंशन जो है जो सुजोक छो नहा
1: प्रिवेंशन जैसे कि मैं रजा जो कि मैं जय रजा जैसे कि एक तो सबसे पहले 40-45 साल बोन तो 45 साल के बाद तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं एग्जाम जो आई एग्जामिनेशन की होनी जरूरी भी साला एक बार कम से कम क्योंकि इससे कैटरेक्ट सिर्फ कैटरेक्ट नहीं इसके अलावा भी बाकी का बीमारी है नहीं इससे सुवारे का पता भी था कि जैसे कि मेरा जो दारोक्रोम प्रोटेक्ट करने जो थे फोन बेस दारोक्रोम थे वर्कर यहाँ या जो जग दारोक्रोम थे से सन ग्लासेस यूज होनी जरूरी बिल्कुल सुनो अगर ब्राइट सनलाइट हूँ सुकुनी अच्छा स्मोकिंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्मोकिंग भी एक फैक्टर हो सकता है अच्छा डायबिटीज को कंट्रोल करना है जनाब तो ये छोटी छोटी चीज यूजुअली कैटरेक्ट जो है ज्यादा तकलीफ नहीं कराता है अगर फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को किसी मरीज को कैटरेक्ट से डे टू डे एक्टिविटीज में प्रॉब्लम करा रहा है तो लास्ट ऑप्शन असोनी जो फ्रेचो की सर्जरी थी उन्हें सर्जरी जो थे जो जो नॉर्मल लेंस है ओपेक ब्लू लेंस से खा लेता तो आर्टिफिशियल लेंस एक भी है जो इंट्राओकुलर लेंस आईओएल आईओएल को उधर प्लेस कर देते हैं ना तो वो एक ये एक डेफिनेटिव

0: से मैनेजमेंट होता है, यही एक रास्ता है, इसके अलावा हम उसको कैसे ट्रीट नहीं कर सकते।
1: या डॉक्टर साहब मेहरबानी। तो बड़ा एक आम तौर पे बेस उपाचन जो बीमारी एक अच्छो ग्लूकोमा आज बारे डायरेक्ट कर जी बनो जो मेहरबानी।
0: ग्लूकोमा तो सबसे डेंजरस बीमारी भी, जो ग्लूकोमा सबसे डेंजरस अच्छो बीमारी जो जो को वजह है, क्योंकि आने से जो बेनो असल में सबसे पहले तो रेसेंस और रीजन रहते हैं जो को वजह भी नहीं आनी असली असली जो असली अच्छो या रो एक रोग वो एक रेजुम रो अच्छो या रो एक्सेस रहते हैं एक्वेस ह्यूमर थे जो तो जरूरी भी अच्छो कार्यो सो प्राइजू बड़ा सो नॉर्मली ड्रेन का बेनो जो ड्रेनिंग एंगल के थ्रू सिलिम्स कैनल के थ्रू ड्रेन का बेनो नॉर्मली हो जाता है ड्रेन। अब प्रॉब्लम जो भी नहीं कि सो ड्रेनिंग एंगल ब्लॉक बोन तो अब फ्लूड तो प्रयोजू हूँ कंटिन्यू सो ड्रेन बोनी इस तरह से जगह ले लीजिए वजह जो बेने के अच्छो या अरो सो दलबो दलबो बिल्डअप बेनो तो से वजह जो बेनो अच्छो जो प्रेशर दब लाओ बेनो बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब वो प्रेशर क्या करता है वो ऑप्टिक नर्व एनी असनी जो अच्छो जो नर्व एनी ना रेनी जो सिग्नल ले जाती है ब्रेन को से नर्व नर्व फाइबर से सो नर्व फाइबर से ना से दल वो डैमेज बेना सो प्रेशर हो जाए सो प्रेशर हो जाए दल वो डैमेज बेता तो उससे शेयर आ रही है इससे वजह असल में। अब प्रॉब्लम इनसे जो खींचू की प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग जो स्टेज है ना जो स्टार्टिंग में मरीज पता भी नहीं उसकी मरीज एक प्रॉब्लम गई थे बिल्कुल पता नहीं चलता है जब तक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स डैमेज नहीं तब तक इंसान अरे सिम्टम्स के नहीं जीजेगा पता ही नहीं चलता है इसीलिए इसी वजह अनसे जो साइलेंट किलर ऑफ द साइट कहा ये साइलेंट थीफ ऑफ द साइट कहा जाता है क्योंकि ये चोर साइलेंट चोर है बिल्कुल खामोशी से ये हमारी आंखों की चोरी नजर की चोरी कर लेता है हमें पता भी नहीं चलता है तो ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं थोड़ा बात करूं तो उम्र के साथ साथ इसके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं।
1: अच्छा, उम्र के साथ।
0: अच्छा जी उम्र के साथ साथ अगर मान लो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है किसी के बाप को है माँ को है या भाई बहन को है तो उनमें जरूरी है कि वो जो है जल्दी स्क्रीनिंग कराते रहे कंटिन्यू स्क्रीनिंग कराते रहे ठीक बिल्कुल जो
1: बिल्कुल
0: बड़ा डायबिटीज हाइपरटेंशन अगर किसी को है ये चीजें जो है करा सकती है तो हम इसको
1: जो अनु
0: जी
1: सवाल
0: जी
1: आपके खोजो कि अनु ग्लूकोमा थे मरज यानी बीमारी अनु जेनेटिक अनु सोचे एक बेंद जो जैसे अगर एक को माँ मालू जो हूँ तो
0: जी
1: किसी
0: जी
1: बाल बाल मुलाय जो बोनी देख
0: बेन
1: हूँ जो
0: जो बेन फैमिली नॉर्मली यानी 50 60 साल के बाद नॉर्मली बनी अगर एक फैमिली हिस्ट्री है तो मेरी जगह बोनी चांस है यानी 40 साल में भी हो सकता है पहले इसीलिए हमेशा ये छोड़ कि अगर एक अजीबा हो रहे या एक हम यानी प्रॉब्लम है तो सिर्फ बाल मुलाय और जो है मेरी 40 साल के बाद जो है आई एग्जामिनेशन छोनी जरूरी भी सर आई एग्जामिनेशन जो थे जो सिर्फ स्क्रीनिंग से थे सर एक लोगों मेरे ग्लूकोमेरा जो थे इस डायग्नोसिस से सिर्फ सबसे मेजर प्रेशर चेक थे अच्छे और प्रेशर कचा को नॉर्मल हूं दन सोचा के ना
1: ठीक
0: अच्छा सोचा के बड़ा ड्रेनिंग मेरा मेजर रहे चूंकि ड्रेनिंग एंगल हूं थारो रो सो ड्रेनिंग एंगल चेक ना सो ब्लॉकेज तो मैं हूं सोचा के ना जो ठीक
1: ठीक
0: बिल ना बड़ा ऑप्टिक नाव का कचा जो कचा डैमेज भी नहीं सोचा के ना सोचा के ताकि जल्दी अगर पता भी ली तो जल्दी बेसू रेत हूं क्योंकि ग्लूकोमा एक बार अगर भी ली अगर डैमेज फॉर एग्जाम्पल उसने कितने फॉर एग्जाम्पल 50% नर्व फाइबर्स को डैमेज कर लिया अब उन नर्व फाइबर डैमेज फाइबर्स को हम रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं वो इरिवर्सिबल है ठीक है
1: बिल्कुल
0: लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू हम जो है फर्दर डैमेज को रोक सकते हैं फर्दर 50% तो हो गए मान लो डैमेज तो 50% नर्व फाइबर्स को हम बचा सकते हैं दवाई के थ्रू बचा सकते हैं या सर्जरी करके बचा सकते हैं। दवाई में हम सर यहाँ पे दो दो ये ड्रॉप्स कुछ डालते हैं दो किस्म के ड्रॉप्स होंगे हम यूजुअली आसान लैंग्वेज बोला जाए तो एक तो ऐसे ड्रॉप्स होते हैं जो हम मैंने बोला था ना सर जो एक्वेस ह्यूमर बनता है उसको कम कराते हैं कम कम कम बनवाते हैं तो इसकी वजह से भी प्रेशर कम हो सकता है या दूसरा जो ड्रेनेज जो ये ड्रेनेज है उसको इंक्रीज कराते हैं ताकि अंदर प्रेशर कम बना रहे ताकि वो डैमेज ना हो फर्दर डैमेज ना हो। तो बाकी उसके अलावा जो डेफिनेटिव सर्जरी होगी वो डेफिनेटिव सर्जरी हम ट्रेबिकुलोप्लास्टी करते हैं तो उसको उसकी वजह से वो ठीक हो सकता है।
1: ग्लूकोमा जो प्रिवेंशन देखें जो मरा जो बेसु कना बचाए बोने आम जग से जोग थे जो अन्य बीमारियों बचाए
0: हाँ
1: बोने चाहिए।
0: ये सबसे इम्पोर्टेंट है जनाब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा कि इस टाइम में जैसे कि मैं रजा जो सबसे पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है स्मोकिंग वगैरह जो बीमारी है फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज लेके रहे जो बीपीओ प्रॉब्लम है शुगर का बीपी है से कंट्रोल से छोड़िए अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक इंसान शुगर है बीपी है तो निगलेक्ट नहीं करना है उसको कंट्रोल में रखना है मतलब उसको टेस्ट करते रहना है।

0: देखना है, बड़ा अगर लग रहा है, कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, या तो जल्दी जाके ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट कराना है। खुसूसन ग्लोकोमा के लिए तो 50 साल के बाद जाके साल में एक बार तो कम से कम ये चीजें में जो अभी बोली, इन प्रेशर चेक करना, एंगल देखना, ऑप्टिक नर्व डैमेज तो नहीं है, ये चीजें सारी देखनी बहुत जरूरी है। ये हम अगर टाइमली पहले करेंगे तो आराम के साथ हम इसको बचा सकते हैं, मतलब अंधापन होने से मरीज को।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बड़ा एक बीमारी एक है जो लाई सोच ले नहीं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी थे ने आ सुबह रे कटाई रजी बनो जो कि जोग बुबेनी अच्छा जोग थोनो और जो से इलाज का जो या कन किस्मो खोराक खोनो जो या जोग प्रिवेंशन जोग थे नो जो असने ऐसा जरूर है मेहरबानी रजी बुझो।
0: डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रॉब्लम बेनिजियो असली यानी डायबिटीज हो जाए भी नहीं। डायबिटीज तो कोते जैसे कि पता है कि डायबिटीज सबसे कॉमन बीमारी बेनिजियो कोते इंडिया जा, ये
1: बिल्कुल
0: इनकी
1: बिल्कुल
0: कहते हैं कि 2025 तक इंडिया जो है डायबिटिक डायबिटीज के कैपिटल बनेगा, वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल वर्ल्ड का। अभी भी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं डायबिटीज के, तो डायबिटीज डायबिटीज से बाकी का प्रॉब्लम में लाए भी नहीं,
1: ठीक
0: तो उनमें से एक प्रॉब्लम अछोजा बेनी जो से बिन डायबिटिक रेटिनोपैथी अंसली जो बिन अंसले अछोजा जो ब्लड वेसल ब्लड वेसल सिंह से डैमेज बेनी जो ठीक मिलता प्रोलॉन्ग ब्लड शुगर सचू और वो अछोजा तो से सोजे ये अछो अन्य नस ब्लड वेसल से नहीं से डैमेज बेनी अंसो जो सिम्टम जो एक तो मान लो फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक पेशेंट हूं अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट हूं शुगर कंट्रोल सचिक नहीं से सर मान लो अगर धुंधला चीज मान लो उसको धुंधला दिख रहा है, उसको सही से वो नहीं हो रहा है, विजन लॉस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको जल्दी चाहिए जाके ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट कराए, दिखाए कि क्या तकलीफ है। नहीं तो बाद में अगर ऐसे ही रहने देंगे तो बाद में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं देख के रखेंगे तो पतो अच्छो या पतो ब्लीडिंग बोनी चांस है, जो सतर्दन विट्रियल हिमरेज
1: अच्छा लेल बदन
0: अच्छा
1: जो अच्छो रहे
0: लेल बोलूँ पतो अच्छो पतो लेल बोलूँ बड़ा बेनी जो उससे सी वजह रेटिना रेटिना पूरा डिटेज वो डिटेज बोने जो वो वहां से निकल जाते डिटेचमेंट थे से रेटिना डिटेचमेंट थे जो, और उसकी वजह से जो मैंने बोला था ग्लोकोमा होता है पहले वो इस हाँ इसकी वजह से ग्लोकोमा भी डेवलप हो सकता है जनाब ठीक मिलता है, तो एट लास्ट इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इसीलिए इसका इसका यही है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स है उनको हम कंट्रोल करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को लंबे टाइम से डायबिटिक पेशेंट है, लंबी टाइम से डायबिटीज चल रही है, उसको हमें खुसूसन ध्यान देना है। अगर किसी का अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है उस पर हमें ध्यान देना है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वेट ज्यादा है, ये चीजों को हमें जो है ख्याल रखना है, इन चीजों को कंट्रोल करना है। डायबिटीज को मैनेज करेंगे, ब्लड शुगर को मॉनिटर करेंगे, जैसे कि HbA1c टेस्ट है कि 3 दिन महीने में हम कर सकते हैं, वो करके देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है वैल्यू ज्यादा है तो हमें जाना है डॉक्टर के पास, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाके उसको मैनेज करना है, और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाके स्क्रीनिंग करनी है आंखों की, बड़ा कोलेस्ट्रॉल कम छोड़ो, स्मोकिंग टबाको कम छोड़ो, विजन लॉस विजन चेंज जो आते हैं उसमें ध्यान देना है। तो इन चीजों से हम बचा सकते हैं अपने आप को,
1: अच्छा बिल्कुल
0: मतलब
1: जी
0: डैमेजेस
1: बिल्कुल
0: परमानेंट डैमेजेस से बचा सकते हैं।
1: ठीक जी ठीक। डॉक्टर साहब मैंने आप बीमारी जैसे कैटरेक्ट सर्जरी का थो शाहू की सर्जरी का ऐसे कोंडेन करे ग्लूकोमा बोने डायबिटिक रेटिनोपैथी बिली आनु बारे रजी का तो मुसु तुरे एक सवाल थे जो कि अन्य बीमारी चे बुझे थो रजी का मुख्तसरन ऐसे कोंडेन करे आ रजी बुझो कि कनी किस्मों खोराक डाइटिक छोनोजी फकर डाइट बारे रजी बुझू कि जो डाइट तो नौजवी की ताकि असने अच्छे बीमारी जो महफूज रची बुझे।
0: जनाब डाइट सबसे जरूरी यानी बिल्जू की एक तो सबसे पहले सब्जी इनजू सब्जी सब्जी खोनी जरूरी बिल, फ्रेश फ्रूट्स खोनी जरूरी बिल
1: नीलो
0: मिलजू,
1: सब्जी है जो
0: नीलो सब्जी बिलो कनुगा सब्जी नीलो सब्जी के खुसूसन बड़ा, जैसे कि एक बीमारी के इनजू हम तो बेसुनर विटामिन ए डिफिशियंसी वजह का ब्लाइंडनेस बोनी चांस बिनेजू, तो से बगैर का बड़ा लाए बीमारी बिना जैसे डिफिशियंसी हो जाएगी। क्या जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन सही रखनी चाहिए, माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए बंदे को, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है ब्लाइंडनेस के लिए, या बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है बॉडी, लेकिन ब्लाइंडनेस में भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो इससे अलावा यानी बड़े ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो भी आंखों के लिए अच्छा होता है, तो ये चीजों के अलावा हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी जरूरी भी, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज हफ्ते में 4-5 बार आधे आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अच्छा एक तो ये मैं आदतों के बारे में अगर बताऊं तो

0: आप आंखों को क्लीन साफ रख सक रखना जरूरी है, गंदे हाथ से या गंदे कपड़े से टच नहीं करना आंखों को। हेल्दी फूड जैसे कि मैंने अभी बोला वो खा सकते हैं हम। अच्छा, इग्नोर सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करेंगे हम। अगर आपको मैंने जैसे कि पहले बोला कि फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को धुंधला दिख रहा है या डबल डबल विजन दिख रही है, तो ये चीजें जो है बंदे को इग्नोर नहीं करना है, जाके ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से मिलना है, उससे बात करनी है। और जैसे कि मैंने बताया कि बाहर काम करने वाले जो बिल्कुल तेज रोशनी में काम धूप में काम करते हैं, तो उनको ये सनग्लासेस पहनने की जरूरत है। तो उसके बाद हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, आजकल के जमाने में जो स्क्रीन है जनाब, स्क्रीन ये बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है अभी इस जमाने में,
1: स्क्रीन
0: पहले
1: मतलब
0: ये नहीं हुआ
1: जो वीडियो
0: करता था।
1: स्क्रीन जैसे क्रेजी बोलना जो
0: स्क्रीन
1: स्क्रीन
0: जैसे रहे हाँ जो ये अभी, पहले तो टीवी हुआ करता था वो, तो चलो फिर भी एक हिसाब से ठीक असली में अभी से तो बेहतर था, क्योंकि टीवी एक डिस्टेंस से ऐसा चले था जो जैसे हम सामने जाकर थोड़ी
1: बिल्कुल
0: देखते थे, नहीं देखते थे, थोड़ा दूर से देखते थे। लेकिन तकलीफ अब प्रॉब्लम ये हो गई है छोटे से छोटे बच्चे के लिए, एक एक साल के बच्चे के पास, 6-6 महीने के बच्चे के सामने मोबाइल रखी जाती है, और उधर से जो लाइट निकलती है व्हाइट लाइट, वो बहुत डेंजरस होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ब्लाइंडनेस का अभी। ठीक मिलता तो से सिखा जो एक तो सबसे मुश्किल टिप्स जो रजम जो कि आनी रे सजा मोबाइल जे एनी एक जेक यानी उसमें रीडिंग मोड आता है उसको ऑन करके रखना है, ताकि वो ब्राइटनेस कम आई, बड़ा ब्राइटनेस थोड़ा कम करके रखना है, ज्यादा से भी तेजू और ब्रेक लेना जरूरी है, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, स्क्रीन टाइम लाओ था तो उसकी वजह आंखों में थकावट होती है, दर्द होता है, तो ब्रेक लेनी जरूरी है स्क्रीन टाइम से, जितना हो सके कम कम यूज करने की कोशिश करनी चाहिए।
1: तो अनि इंटरेस्ट ने आजु की प्रोग्राम खेन छुपा पेनो मरद या इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, खुदा यार।
2: दासन सपायते शिना प्रोग्राम गेने पिन पुनर मीडियम वेका दिवा आकाशवाणी करगिली मीडियम वे 1584 किलो हर्ट्स, मीडियम वे 684 किलो हर्ट्स, FM सावाशेरे 1 MHz और मोबाइल एप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन से पैर के 3 बजे हुआ चाहते हैं। सामीन अब से लेकर शाम के 5 बजे तक हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम रिले करेंगे, रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस का अब आगाज होता है।

नज़र डालते हैं आज की मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद यानी 3:05 पर खबरें नश्र की जाएंगी। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद आप सुन सकेंगे 3:15 पर। 3:30 पर हम आपको सुनवाएंगे एक ड्रामा जिसका उन्वान है फनकार। 4 बजे से आप फिल्मी मौसीकी का लुत्फ ले सकेंगे। ये प्रोग्राम शाम के 4:50 तक जारी रहेगा।

शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी और 5 बजे आज की दूसरी मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं ताकि कलीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाया जा सके और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को वसअत दी जा सके। सरकार ने अबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेमाल से मुतालिक इश्तहारात हटाए जाएं। सरकार ने इस सिलसिले में 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। और खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और तआवुन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इकतसादी रबते और ज्यादा मजबूत होंगे। जामे कलीदी साझेदारी के बारे में सफीर मसूफ ने कहा कि इस शराकत दारी के कई सुतून हैं। इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है। इसके अलावा ताल्लुकात में और ज्यादा इकतसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर अजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी के 8 जुलाई से 10 जुलाई तक के ऑस्ट्रेलिया के मुजव्वजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इकतसादी साझेदार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वजीर अजम के दफ्तर ने कहा कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पसीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहमियत इकतसादी शराकतदार है। जनाब एंथनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी हैं जो मजबूत इकतसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तआवुन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरेन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और मस्कूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को

मजीद मुस्तहकम बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। सरकार ने मगरबी एशिया महाजराई में जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुस के रास्ते रकीक कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर आयद इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा कि कुदरती गैस की सप्लाई से मुतालिक इंजिबाती ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है, जिसके तहत उन अहम इमरजेंसी दफात को हटा दिया गया है जिनकी रूह से सरकार को अंदरून मुल्क तैयार करदा कुदरती गैस और दरामद की गई एलएनजी अलॉट करने को तरजीह हासिल थी। अब नए हुरमुस के रास्ते एलएनजी की खेप में रुकावट पड़ने के बाद इस साल मार्च में लाजमी अशिया से मुतालिक एक्ट के तहत ये इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया गया था। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाले इन दावों को गलत करार दिया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल दरामद करने की पेशकश नामंजूर कर दी है। वजारत ने कहा कि ये इतला दुरुस्त नहीं है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस तरह की कोई पेशकश नहीं की है। उसने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल बरामद करने की कोई तजवीज जेर गौर नहीं है। वजारत ने लोगों से कहा कि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और वजारत की मुसद्दका जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर इश्तहारात में बच्चों के जिंसी इस्तेमाल और ज्यादती से मुतालिक मवाद के सिलसिले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। सरकारी जराए के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम को यह हुक्म दिया है कि उन सभी इश्तहारात और मवाद को हटाया जाए जिनके जरिए बच्चों के जिंसी इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने मेटा से 7 दिन के अंदर अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। सरकार इस बात का जायजा ले रही है कि आया मशकूरा प्लेटफॉर्म ने भारत के मुतालिका सेफ्टी रहनुमा उसूलों पर अमल किया है या नहीं। डिजिटल कवानीन के तहत भारत में फहाशी और बच्चों के जिंसी इस्तेमाल से वाबस्ता मवाद की तकसीम एक फौजदारी जुर्म है। इससे कबल वजारत ने इन इतलात का नोटिस लिया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा काबिल एतराज मवाद दिखाया गया है कि जिससे बच्चों के जिंसी इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने मेटा से जवाब तलब करने के लिए मुतालिका एहलकारों को हिदायत भी जारी की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की मारूफ पंडावानी गुलूकारा और पद्म विभूषण से सरफराज तीजन भाई का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आज अलग सुबह 3:15 के करीब आखिरी सांस ली। अपनी पुर असर आवाज, स्टेज पर शानदार पेशकश और गायकी के मुनफरिद अंदाज के सबब तीजन भाई ने पंडावानी को न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि बैन अलाक्वामी सतह पर भी एक नई शनाख्त दी। भारतीय लोक आर्ट के लिए उनकी गैर मामूली और गिराकद खिदमात के एतराफ में उन्हें पद्मश्री, पद्मा भूषण और फिर पद्मा विभूषण से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रामेन डेका और वजीर आला विष्णु देव साई ने भी तीजन भाई के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है और लोक रिवायत को महफूज रखने, नीज छत्तीसगढ़ की सकाफती विरासत को आलमी मंजरनामे तक ले जाने में उनके गिराकद रोल की सताइश की है। डॉक्टर तीजन भाई की आखिरी रसूम दुर्ग जिले में उनके आबाई गांव गानियारी में आज शाम पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। भारत ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत ब्रिक्स खवातीन वर्किंग ग्रुप की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा जो केरलम के शहर कोची में कल से शुरू हो रही है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत के मुताबिक ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के आला सरकारी अहदेदार मुश्तरका तरजीहात के ताल्लुक से तावुन बढ़ाते हुए सभी शोबों में खवातीन को बाख्तियार बनाने से मुतालिक अहम मामलात नीस खवातीन के कायदाना रोल के साथ तरक्की के मामले पर तबादला ख्याल करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के मुनशात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहों की दो रोजा मीटिंग कल आसाम में गुवाहाटी में शुरू हो रही है। उमूर दाखिला की वजारत के मुताबिक इस

0: मीटिंग में मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक एजेंसियों के माबेन कार्रवाई से मुतालिक इश्तराक को मजबूत बनाने और इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसमें ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के आला अहदेदार भी शिरकत करेंगे और कार्रवाई से मुतालिक तालमेल, खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करने, सलाहियत साजी और मुनशियात से मुतालिक उभरते हुए खतरात के तनाजुर में इज्तिमाई इकदाम को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हौसला अफजा रही है। यात्रा शुरू होने के पहले दो दिन के दौरान 32,313 अकीदतमंदों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। यात्रा के दूसरे दिन 20,145 यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए, जो पिछले साल दूसरे दिन वहां जाने वाले यात्रियों की तादाद से कहीं ज्यादा है। खवातीन के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार छठी कामयाबी हासिल की थी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर जा रही हैं, ताकि किलीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाया जा सके और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को वसत दी जा सके। सरकार ने अपने हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। और मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों को इस्तेसाल से मुतालिक इश्तहारात हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

अब्दुल्ला फिल्म का नगमा अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर।

किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा अभी अपने डार्लिंग डार्लिंग फिल्म से सुना। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। फ्रीक्वेंसी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप उर्दू सर्विस सुन सकते हैं और DD फ्री डिश पर भी उर्दू सर्विस की नशरियात दस्तियाब है। लीजिए अब सुनिए जनाब कश्मीरी लाल जाकिर का तहरीर करदा एक मजाहिया ड्रामा, उनवान है फनकार।

0: आज की कोई नई बात?
1: कोई नहीं सरकार।
0: तुम कभी कोई बात नहीं सुनाती।
1: मैं तो बस एक ही खबर सुनाऊंगी शहजादी।
0: कौन सी? समझी, तुम बहुत गुस्ताख होती जा रही हो।
1: सरकार, मैं एक ताज़ा खबर लाई हूँ।
0: कहो।
1: शहनशाह के हुजूर में कल मुल्क के मूसीकारों का एक इज्तिमा हो रहा है।
0: अच्छा, हमें तो मालूम नहीं।
1: आपकी अफसरदा तबीयत दहल जाएगी।
0: सुना है
1: जहाँ पनाह ने ये सब आप ही के लिए किया है।

0: सुभान अल्लाह, तारों से जैसे शोले फूट रहे हैं। सरकार को पसंद आया उसका सितार बजाना?
1: हाँ, बहुत पसंद।
0: ये कौन है? फरार।

0: तुम जीत गए फनकार।
1: तो अब मुझे इजाजत है।
0: गुलरुबा, फराज को इनकी कयामगाह तक पहुंचा दो।
2: जो हुक्म।
0: फनकार, कल भी आओगे ना?
1: अगर हुजूर याद फरमाएंगी तो जरूर हाजिर होऊंगा।

0: फनकार, हम तुम्हारे फन से बहुत मुतासिर हुए। कहो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए?
1: मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, फन अपना इनाम आप ही है।
0: लेकिन हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं।
1: तो लोगों को फन की कदर करना सिखा दी।

0: मौसी चार फराज पहुंच गए।
1: उन्हें इज्जत से यहां ले आ।
0: बहुत हो
2: शहंशाह आलम, गुलाम आदा बजा लाता है।
1: फराज, तुम एक अजीम शख्सियत के मालिक हो। खुशकिस्मत है वो हसीन वादी जिसने तुम्हें जन्म दिया।
2: हुजूर की जरा नवाजी का शुक्रिया।
1: तुम वाकई एक बड़े फनकार हो।
2: जहां बना इस हौसला अफजाई का शुक्रिया।
1: अब के हम भी कश्मीर जाने का इरादा रखते हैं। अपने नगमों से हमारा इस्तकबाल करोगे ना?
2: मैं इसे अपनी खुशबख्ती समझूंगा।
1: तुम्हारा इरादा यहां से जल जाने का तो नहीं?
2: अभी कुछ रोज यही हूं अलीजा।
1: अगर हम किसी वक्त तुम्हारे फन से महजूज होना चाहें,
2: मैं शरफ कदम बोसी को हाजिर हो जाऊंगा जहां बना।

0: शहजादी आज तुझसे बहुत खफा है।
1: मुझसे कौन सी खता हुई?
0: जिसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी कम है।
1: तुम्हारा मतलब?
0: शहजादी खुद ही तुमसे कह देंगी। एलो, वो इधर ही तशरीफ ला रही है। कनी ज्यादा बजा लाती है। फराज
1: जी,
0: आज तुम आदाब भी नहीं बजा लाते, इस तरह गुमसुम क्यों खड़े हो?
1: आदाब बजा लाता हूं।
0: लेकिन तुम आज यूं खोए खोए से क्यों नजर आते हो?
1: नहीं सरकार, मैं ठीक हूं।
0: क्या वतन की याद सता रही है?
1: जी नहीं।
0: तुम्हारा वतन भी तो जन्नत नजीर है, इससे दूर रहने का गम क्यों ना हो?
1: मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि सजा तजवीज करने से पहले मुझे मेरी खता बता दी जाए।
0: कैसी सजा? कौन सी खता? मैं कुछ नहीं समझी, तुम्हारा क्या मतलब है फराज? इस दफा आप इन्हें माफ कर दी, आइंदा ऐसे इनसे कोई खता ना होगी।
2: खामोश।
0: समझी? तो इस गुस्ताख ने तुम्हें परेशान किया है, लेकिन तुम खामोश क्यों हो?
1: जी।
0: क्या सोच रहे हो तुम?
1: कुछ नहीं सरकार।
0: न जाने ये फनकार हर वक्त सोचते क्यों रहते हैं।
1: उनकी मजबूरी है।
0: छोड़ो इस किस्से को, देखते नहीं ये गुंचे नींद भरी आंखों से एक मुद्दत से किसी का इंतजार कर रहे हैं। आकाश के झरोखे से माहे कामिल यूं उभर रहा है जैसे कश्मीर की किसी झील में कमल का बड़ा सा फूल खिल रहा हो। कितना खूबसूरत है ये फूल, लेकिन कितनी बोझल है ये फजा। इसकी थकन और घुटन को नगमे के सैलाब में बहा दो फराज, ताकि ये फजा बारिश से धुली हुई कलियों की तरह निखर जाए। हाँ, तो छेड़ो जरा तारों को।

0: टूट गया।
1: मुझे अफसोस है
0: शहजादी वाला तबार, शिकस्ता तार सिर्फ अफसोस से नहीं जोड़ा करते।
1: लेकिन फनकार तार टूट क्यों जाते हैं?
0: तार ज्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते शहजादी।
1: दबाव के बगैर तारों से नगमा भी तो नहीं फूटता।
0: लेकिन शहजादी दबाव

0: हद तक दबाव
1: दबाव और हद
0: हदें अबूर करने के नतायज अच्छे नहीं होते,
1: लेकिन गैर मामूली जरूर होते हैं। अबूर करोगे हदें?
0: कौन सी हदें?
1: वो हदें जो जिंदगी को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
0: लेकिन जिंदगी तो गैर मुनकसिम है, ये एक ऐसा दरिया है जिसके आगे बंद नहीं बांधे।
1: लेकिन इसमें से नहरें निकाल कर उसकी शख्सियत को जख्मी किया जा सकता है
0: और वो दोबारा उसी में शामिल होकर समंदर की तरह बढ़ने लगती है, जहाँ उनका बहुत बड़ा मरकज है, जहाँ पहुँच कर वो एक लंबे सफर पर रवाना हो जाती है, एक ऐसा सफर जो मंजिल से बेरियास है।
1: जानते हो मैं कौन हूँ?
0: आप हैं शहंशाह की बेटी शहजादी लाला रोह।
1: और तुम?
0: मैं गरीब फनकार।
1: और फिर भी तुम समझते हो कि जिंदगी गैर मुनकसिम है?
0: जी।
1: कैसे?
0: ये सब

0: होगी। चांद से चांदनी कैसे अलग हो सकती है, तारों से नूर कौन जुदा कर सकता है? हो सकता है उसे मेरा ख्याल भी ना आए, हो सकता है दुनिया में कौन सी बात मुमकिन नहीं।
1: क्या बात है फनकार, आज तुम्हारा सांस खामोश क्यों है? आज तुम्हारे चेहरे पर अफसुर्दगी क्यों छाई है?
0: नहीं तो
1: मालूम होता है तुमने कभी मोहब्बत नहीं की।
0: की है लेकिन
1: रुक क्यों गए?
0: लेकिन कामयाब नहीं हुआ।
1: इसीलिए परेशान हूँ, ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सके कि लाला रुख शहजादे परवेज से ब्याही जा रही है। तुम्हें दुख हो रहा है कि शहजादी को तुम जैसे कंगले के हाथ नहीं सौंपा गया। तुम कितने खुदगर्ज़ हो, तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल है, लाला रुख की भलाई का नहीं।
0: अगर एक बुत तराश का अपने बुत के तोड़े जाने पर चीखना खुदगर्ज़ी है तो मैं खुदगर्ज़ हूँ कुलरबा।
1: खैर, ये बातें तुम शहजादी से खुद ही कर लेना, उसने तुम्हें बुलवा भेजा है।
0: मुझे वहां ले जाकर जलील करना चाहती हो? कुलरबा, अब मैं नहीं जाऊंगा, उसके मुस्तकबिल का फैसला हो चुका। ओह, मुझे अपने तखयल पे भी कोई हक नहीं रहा।
1: आज महल का एक एक फूल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, रात की हसीन वादी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम आज भी नहीं जाओ?
0: हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा किसी को भी इंतजार नहीं, सब अपने हसीन मुस्तकबिल का इंतजार कर रहे हैं।
1: अगर तुम रजामंदी से नहीं जाओगे तो तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे।
0: गुलाम नहीं, फनकार हूँ, जिसके गुरूर के आगे खुदा भी सर झुकाता है।
1: तुम्हारे खुदा ही ने तुम्हें याद किया है, वही सर झुकाए खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
0: खुदा, मेरा खुदा।
1: तो क्या सोचा?
0: कुलरबा, मैं जाऊंगा।
1: आफरी है फनकार।

0: फराज, मेरे अच्छे फनकार, आज तुम्हारी आंखों के कमल मुरझा क्यों रहे हैं?
1: खिले ही करते शहजादी साहबा।
0: जब पहली बार तुम मुझे मिले थे।
1: नहीं, ये जब भी मुरझाए हुए थे, सिर्फ तुम्हारी शबनमी आंखों से इनमें जरा निखार आ गया था।
0: मैं भी कश्मीर जा रही हूँ, शहंशाह आलम ने मुझे इजाजत बख्श दी है। कितना पुरलुत्फ रहेगा ये तवील सफर
1: और कितना जां कुसल।
0: क्यों?
1: इसलिए कि इसके मंजिल बड़ी भयानक है।
0: मुसाफिर के लिए ये तो जरूरी नहीं कि वो मंजिल पर पहुंचकर ही दम ले, वो रास्ते के किसी हसीन मोड़ पर ठहरकर मंजिल के ख्याल से बेनियाज भी तो हो सकता है।
1: काफिले वाले ऐसे मुसाफिरों का इंतजार नहीं करते।
0: गर्दे राह तो उन्होंने अपने सीने से लगाई है ना।
1: ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो। वो मोड़ अब करीब है जहाँ से हमारे रास्ते तकसीम होते हैं।
0: छोड़ो इन तलख बातों को, कोई नगमा सुनाओ।
1: अब इन तारों से नगमा नहीं फूटेगा लाला रुख।
0: फूटेगा फराज।
1: आज मेरा जी सितार बजाने को नहीं चाहता।
0: क्यों?
1: इसका जवाब मेरे पास नहीं।
0: फराज, तुम गुस्ताख हो रहे हो। शहजादी लाला रुख तुम्हें नगमा सुनाने का हुक्म देती है।
1: फराज इस हुक्म की तामील करने से मासूर है।
0: लाला रुख तुमसे सितार बजाने की इल्तिजा करती है।
1: वनकार शिकस्ता तारों को मजरूह करने की कोशिश करेगा।

0: आज तो तुम्हारे सितार के तार सिसक रहे हैं फराज।
1: मजरू तार सिसका ही करते हैं शहजादी।
0: तुम्हें हमारे काफिले के साथ जाने में कोई इतराज तो नहीं?
1: बेहतर हो अगर मैं तना ही चल दूं।
0: नहीं, ये नामुनासिब है और इसमें हमारी तौहीन है।
1: तो मैं आप ही के काफिले के साथ चलूंगा।
0: कल शाम तक खुदा हाफिज। कल रात हम पहले पड़ाव में मिलेंगे। हाँ, हमारे वजीर आजम से बचकर रहना, वो अच्छा आदमी नहीं
1: जी।
0: और गुलरुबा पर एतम

0: क्या हो गई है दादी?
1: क्यों क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्यों?
0: फराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात जब वो यहाँ से अपने खेमे की तरफ जा रहा था तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया।
1: सर?
0: हाँ शहजादी।
1: अब वो कहाँ है?
0: अब वो फौज की हिरासत में है। वो लोग रात भर उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते रहे, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो आपसे मिलने आया था।
1: गुलरुबा,
0: उसके खाल तक को उधेड़ दिया गया है, लेकिन उसके होठों पर आपका नाम तक नहीं।
1: मैं उससे मिलने जाऊंगी।
0: नहीं, ये मुनासिब नहीं।
1: नहीं गुलरुबा, मुझे उसके पास पहुंचना ही चाहिए। फराज के जिस्म को बर्छियों से नोचा जा रहा है और तू मुझे वहां जाने से रोकती है। नहीं गुलरुबा, मैं जाऊंगी।
0: नहीं,
1: मैं जरूर जाऊंगी।
0: मैं कोशिश करूंगी कि चंद लम्हों के लिए फराज को आपके पास ले आऊं।
1: मैं तेरा एहसान मरने के बाद भी ना भूलूंगी। मुझे तुझ पर भरोसा है मेरी रफी।
0: कनीज अपना फर्ज पूरा करेगी,
1: और जब वो आ जाए तो अपने हाथों से मुझे जहर पिला देना ताकि मैं उसकी निढाल आगोश में दम तोड़
0: सकूं। क्या कह रही हैं आप?
1: मेरे फर्ज का यही तकाजा है।
0: ये मुझसे ना हो सकेगा। मैं फराज को भी यहाँ ना आने दूंगी।
1: मोहब्बत के दो मतवालों को नजदीक भी तू ही लाई थी, और अब उन्हें एक दूसरे में समा जाने के लिए भी तेरी ही जरूरत है। तुझे ये फर्ज पूरा करना ही चाहिए। जिंदगी के दो मुख्तलिफ धारों को एक दूसरे में मत गम कर दो गुलरुबा, ताकि जिंदगी को गैर मुनकसिम समझने वाला मेरा फनकार उसे टुकड़े टुकड़े होते ना देखे, मेरे फराज के यकीन को चोट ना पहुंचे। गुलरुबा,

0: इस वक्त जिंदगी की आखिरी घड़ियों में भी ख्वाब क्यों मेरी आंखों से जुदा नहीं होते?
1: तुम इस वक्त लाला रुख के खेमे में हो फराज।
0: नहीं, ये सब झूठ है। तुम सब शहंशाह की लड़की को बदनाम करते हो। तुम नमक हराम हो। मैं लाला रुख को नहीं जानता।
1: फराज, तुम इस वक्त फौजियों की हिरासत में नहीं, मेरे खेमे में हो।
0: लाला रुख।
1: फराज, जालिमों ने तुम्हारे जिस्म को बुरी तरह उधेड़ डाला है। तुम सच ही कहते थे।
0: क्या?
1: हदें उबूर करने के नताइज अच्छे नहीं होते।
0: तो तुम अपने किए पर पछतावा?
1: नहीं, नहीं मेरी रूह और जिस्म के मालिक, नहीं। मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैंने एक अजीम फनकार की जिंदगी को बर्बाद कर डाला।
0: जिंदगी गैर मुनकसिम है लाला रुख, वो कभी बर्बाद नहीं होती। आज तुमने सुर्ख लिबास पहन रखा है लाला रुख।
1: आज मेरी मोहब्बत की तकमील है फराज।
0: सुर्ख रंग मुझे खून की याद दिलाता है शहजादा।
1: और खून ही से मोहब्बत नशोनुमा पाती है।
0: मैंने कहा था ना कि जिंदगी की हदों से तजावज करना नामुमकिन है।
1: जिंदगी गैर मुनकसिम है। जिंदगी का धारा किसी भी रोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुलरुबा, गुलरुबा। शहजादी हुजूर, मेरी अच्छी रफीक, लाओ आबे हया।
2: शहजादी साहिबा,
1: ये मेरा हुक्म है।
2: जी, और आपका हुक्म बजा लाना मेरा फर्ज है। फर्ज लीजिए।
1: मेरी अच्छी गुलरुबा, खुदा हाफिज। अब मुझे अपने महबूब फनकार से कोई जुदा ना कर सकेगा। अब जिंदगी की हदें मेरी मोहब्बत की राह में चट्टाने न बन सकेंगी।
2: शहजादी साहब ने जहर पी लिया फराज।
0: शहजादी, उसे बाजी ले जाना चाहती हो?
1: नहीं फराज, मैं तो तुम्हारे करीब आ रही हूँ। इतने करीब कि हमारी हस्तियों को कभी कोई जुदा न कर सके।
0: गुलरुबा, मुझे भी तो यही जाने हया।
1: नहीं नहीं फराज,
0: जिंदगी की हदों को पिघल कर बह जाने तो। गुलरुबा, जल्दी करो, ये एक फनकार की आखिरी दरखास्त है।
2: और ये भी मेरा फर्ज है। लीजिए फराज, ये तुमने क्या किया?
0: लाला रुख, जिंदगी के हदें चकना चूर हो गई, मोहब्बत कामयाब हो गई। मेरे करीब हो जाओ लाला रुख, मुझे अपने खिले हुए केसों के दामन में छिपा लो। कितनी महक है इन केसों में, जैसे इत्र की हल्की हल्की फुहार पड़ रही हो। चांद की किरणें तुम्हारे बालों में टांकने के लिए फिरदौस से फूल चुन रही है। देख रही हो लाला रुख?
1: देख रही हूँ मेरे देवता।
0: इन्हें पहचानती हो?
1: हाँ, ये मेरे सपनों के फूल हैं।
0: सपनों के फूल, कितने हसीन हैं ये फूल। लाला रुख, मंजिल।

जिंदगी की राह में पहाड़ खड़े करने वाले इंसानों, मोहब्बत सब कुछ बहा कर ले जाती है। मौत के मतवाले मोहब्बत का जान पी चुके हैं।

अभी आप सुन रहे थे जनाब कश्मीरी लाल जाकिर का तहरीर करदा ड्रामा, उन्वान था फनकार। ड्रामे की पेशकश अनवर खान की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे दीनानाथ जोतशी, जलालुद्दीन, टी आर मेहता, एच के वर्मा, विनोद कश्यप और सैयदा सैयदा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमे।

लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजों में ये नगमत हल्लम है फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है एक चादर मैली सी। आवाजें शब्बीर कुमार और आशा भोसले की हैं।

में खुशबू ये रहता है।

उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाजों में इश्क फिल्म का नगमा अभी आप सुन रहे थे। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपको सुनवाने जा रहे हैं जाने मन फिल्म से। आवाजें सोनू निगम और साधना सरगम की है।

ostanem. Vas ne uperete.

Cafe.

Sen ne kadar?

अनुराधा पोडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में जानम फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में है, फिल्म है चमत्कार।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में चमत्कार फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। ये थी हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं ताकि क्लीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाया जा सके और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को सद दी जा सके। सरकार ने अब नए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तेहारात हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। और खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इकतसादी राबते और ज्यादा मजबूत होंगे। जामे क्लीदी साझेदारी के बारे में सफीर मौसूफ ने कहा कि शराकत दारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है। इसके अलावा ताल्लुकात में और ज्यादा इक्तसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजवजा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इकतसादी शराकत दार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहम इकतसादी शराकत दार है। जनाब एंथनी अल्बनीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी पर मबनी हैं, जो मजबूत इकतसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। उमूर खारजा के वजीर ममलिकत कीर्ति वर्धन सिंह कल से स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में भारतीय वफ्द की क्यादत करेंगे, जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा के मस्नूई ज़हानत के नज्म व नस्क से मुतालिक पहले आलमी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस अक्वामे मुत्तहिदा का एक आलमी और कसीर फरीकी फोरम है, जिसका क्याम सितंबर 2024 में पैक्ट ऑफ द फ्यूचर के हिस्से के तौर पर अपनाए गए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के बाद किया गया था।

0: फ्रांस ने फिलेडेल्फिया में खेले गए एक सख्त मुकाबले में पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने मैच का वाहिद गोल 17वें मिनट में पेनाल्टी पर किया। क्रोशिया में जारी ग्रैंड शतरंज टूर के दौरान बिलिट्स मरहले में मायूसकन आगाज के बाद भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा चौथे मुकाम पर आ गए हैं। खास खास खबरें एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं ताकि क्लीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाया जा सके और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को सद दी जा सके। सरकार ने अपने हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG के खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तहार हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। शाम के 5 बजने को है हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। रात 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: सामिन, अभी तक आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामिन, अब से लेकर रात के 10 बजे तक आप हमारे नशरियात मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ज़ोन AIR पर भी आप हमें सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मीडियम वेव 9:99 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 9:99 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ या मोबाइल ऐप न्यूज़ ज़ोन AIR का नजर आकाशवाणी करगिल का नजर न्यूज़ दिलिंग जगपो अधिक जुलाई जेगा दिलिंग फ्रोचुक पौत भी प्रोग्राम खुरे नचाया ती दोनों लेबसेट नची जूना सलाम पो फुदमोचन सोशिक सगमा संसनल्ला दुआया प्रोग्राम सदाकल्ला गुजुबित दी प्रोग्राम रक्से का न्यन मजर सखमा कुरानी तिलावत ना तर्जुमा मुल्कान पन शेख मोहम्मद इब्राहिम।
3: بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين حجيك شعري عالم اسلام حج واجبات انسان لا قربانی خدا اس کری دی محکم ان کتاب خطابت عالم بشری اللہ دی قربانی شنک شق نیشن تنچسمن بلکی انت تقوا تنچسن خدا حقیقت بندگی بچس پنیشتن لبچسن کنت اخلاص عمل پو لبچسن خداوند کریم اس دنیا تی دی بیل سونس کن عالم بشر لدیون کم با سونست تاکی خدای می تخص بو سق بسیک تن مشوق دونی که انسان لحدایت چوق خدا از نیکو کاران لخدا رگسکت تا ما سونست

برگی خبرن پروچپو آسمین سو تو سدغا نمینه نیشور سغا دونا تو سد اردن نمینه نیشور سغا تو سدغا نفیتی کار دلوگزی ها گوری پروچو جن سو فرونی پروگرام پروچپو آسمین سو تو سدغا نمینه سمچو سو आकाशवाणी दिल्ली का ना हिंदी ना अंग्रेजी ना खबर फुचू पुआस में जो तुसो टुक ना मिनट चौगे का पुर्गी गाजरी फुचू जन जो सगेत पानी फिया प्रोग्राम फुचू पुआस में इन जो तुसो टुक ना फिर तुसो दुनिया का प्रोग्राम फुचू जन जो अशीन मोनी आकाशवाणी श्रीनगर का ना उद्यान ना खबर ना तस्वीर फुचू पुआस में जो तुसो दुनिया मिले न्यूज दूसर गया दिखा प्रोग्राम फुटी चुन से यूज़ चुन मार में आकाशवाणी दिल्ली का ना हिंदी अंग्रेजी दोनों उर्दू नो खबरें फुटी पे वास पे इन सो दूसर गया ना मैंने निशुंगीज ना का दूसर गुने फेंटे का बल्कि प्रोग्राम फुटी चुन सो दिन में गच्ची दिन फुटी पे भी प्रोग्राम ने सिर पे मीडिया में का दि�

इंजीनियर, पायलट्स, एंटरप्रेनर्स और लीडर बन रहे हैं। ये मॉडर्न सोसाइटी के पॉजिटिव चेंज है। एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। जब एक लड़की एजुकेटेड होती है तो पूरा फैमिली एजुकेटेड होता है। एजुकेशन से वुमेन को सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, अवेयरनेस आते हैं और वो अपने राइट्स को समझ पाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एम्पावरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब वुमेन अर्न करते हैं तो वो अपनी लाइफ की डिसीजन खुद दे सकती है। लेकिन आज भी कई चैलेंजेस है, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, अनइक्वल पे, चाइल्ड मैरिज और लैक ऑफ सेफ्टी। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट लॉस के साथ साथ सोसाइटी का सपोर्ट भी ज़रूरी है। पेरेंट को चाहिए कि लड़कियों

0: करती है और नेशन प्रोग्रेस करते हैं। आखिर मैं यही कहना चाहूँगी, एम्पावर ए वुमेन एंड यू एम्पावर ए नेशन।
1: Asis namo edi topic bo wanya demo to sumri namo nusrat fatimat ngatin ngan khan sok chilip chit bo
2: ngas man kawachi
1: kawachi bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim.

समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी

0: Davidovich Fokina of Spain in the pre-quarterfinals. In the women's singles, Czech Republic's Karolina Muchova will take on compatriot Barbora Krejcikova. Top-seeded Arina Sabalenka will face Japan's Naomi Osaka. And that is the end of this news bulletin.
1: दसन सखपायंते आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी ना अंग्रेजी नो खबर सुना बेनत पिन मीडियम वे का दु आकाशवाणी करगिलिन
2: दादे कौन सा प्लांट है
3: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
4: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
2: दादू रुको लिंक में क्लिक मत करना
4: क्यों
2: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
4: थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले
3: तेरी समझदारी का फल
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो
6: रंगी बिजनेस उन लस्के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलेन उन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब पिल्ले पीस कप्स मांगू धरने यंतिस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
7: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता
7: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
8: 8700014242 सुनो ना
7: हाँ
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ
7: तो रोका किसने है हाँ
8: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं
7: मुझसे
8: तुमसे तो अच्छा बताओ फिर
7: आकाशवाणी है ना मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है
8: पर उससे मेरा क्या फायदा
7: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं
7: बहुत आसान है मैं बताती हूँ नंबर नोट करो 8700014242
8: ओ 8700014242 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर
9: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम

0: हाँ यार, नारी लगा दी चिकचा यो तादिया नो ने दियो तंग मना छुनचे का तो मिशेशा दे दे ना मन जरा रंग संभव में खुर्चा रंग लगा चाहे रंग कमाई 100 रुपए हो 50 रुपए हो उसमें से यार फिर चिकोरां तंगना वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो दे फिया का संभव दे जाती दिन दशक में खुर्चा है कि नस दियो मबास नस दियो बास नस हाँ दरे यंता इम्पोर्ट है मतलब दरे दिन हर एक दिन यानो रंग स्किल कनाया रां कमाई छाना का तो ओदोला यरस ओदो बसां थो से आस्किया प्रुगा इदी ताना का तो या यां चेदे निकताना का तो कल को यरस द्या सोम कि हाँ मैं कल को इससे भी ज्यादा दूंगी ये
1: बिल्कुल
0: जरे। तो दे फिया संब्यानो ओदे जाते नेगेटिव मने में खुर्चा अपने स्किल्स को आगे बढ़ाना है।
1: बख्शीज अच्छे मनर द मुमोल छना अच्छे शहर दखसम तंगती फ्रुसा जुगाउन स्कूल लस्क्यो पतंग छना खोस शेस पो नसी लेनो था स्कूली सबक पो या वोकेश नॉलेज से दंग या एकेडमिक पुसी लेनो तिन जिंग यंबो यंबो खोस हजु गच लक्षशिन अधिकल लजबे फिला खोंता गच टाइम फिंग मगोशेसिन या अतामा खचिस तदु चो सों बेंदु पहाजु फ्रुन लकी सबक पुसी लांजरे सिर्फ शोकबुत से का फोकस जाने साइड लंग खोन चितों टैलेंट तो खुद एक लास्ट बुक सब मना दो मना इग्नोर बसंत पा उदन सब मना अच्छी संख्या में मिंदु सिर्फ सबक पूछे कदन ना मिंदु पा उदेश को लेर ची समझो
0: यनुमो तदरे दियानुक यरस दियाजस कि अभी स्कूल के दरे स्कूली फ्रुसगियोत गति दरे मना क्या रिपो फोकस पूछी कदे सवाक पे कतान दे सवाक पे कतान मिता मर गोशिंग क्योंकि अभी गति दना फ्रुसगे नंगोल दिया और भी स्किल्स है हर एक चीज यानु खां जैसे कि पेंटिंग यो चाहे खाची का कुछ भी करने का मतलब खाची का कोई जिम ट्रेनर बनने का कोई आर्मी में जाने का मतलब हर एक चीज ओं चीन तो अता आमा नी दया दंदा युत पर गोशिन की बच्चों को मतलब शून ला सवक नंबो गा स्किल पो दुगलता से खोज ठीक बसलता गोशिन ना कि हर एक चीज का मतलब खोज गक्चा कि सवक पो सिल चां सवक पो सिल चां सवक पो सिल चां
1: जरा
0: ओ तो दे दे फिया गति अतामा ले जुआ इन की यंतस कभी भी फ्रुआ मतलब कभी भी रोक टोक मिवा जा खोज कहे चाहे खुरी सवक पे कसनान मा यंग दिन दचियानो खोस फोकस बे नो ओदा नो फोकस बाजो फ्रु खची जरा सौख मिसिल बाजो दरा फ्रु खची सौख मसिल बा गति अम अतामा खची इज दया जरंदु के फ्रु नि सौख मसिल फ्रु नि ए मा बस लेकिन अतामा लंग फ्रु नि दन दल तार गोशिन के फ्रु नि सौख सौख के अलावा खोया स्किल पोजो टैलेंट चि दो स्किल पोजो दो खो बाज शोक चि दो खो ओदा नो कैरी पोदन दा बोशियन तस इंगेज बोस ताकि वो उसमें भी आगे बढ़ सके दरी गति करगिल फ्रुबाज भी जो दिया मतलब फ्रु सको फ्रु फ्रा सको अर देर सो सो हर एक जगह कोई टिकवांडो में है कोई इसमें है कोई उसमें हर एक जगह से अपने मतलब करगिल का नाम रोशन करते आ रहे हैं। रायानो गचुक यंती यानो टैलेंट शो न का तो दो यंत सत मसत पा यंतस यंती दे टैलेंट नोन यंतस आगे यंतस स्तोचा और मतलब राय स्किल पे का लस बिंदुकचा राय टैलेंट पे का लस बिंदुक चक नी तरफ से सगा यंता सहादिया जो है इनके अपने अंदर जो भी टैलेंट है और गति करगिले मीमा सुन ला देना जो है इनके अपने मतलब गति युली युली करगिली जा गति गचु को टैलेंट जो न का तो चाहे गचुक स्किल यानो गचुक गति प्रोफ्रा सगा दे नबस क्यों ध्यान सगा यंतस तो ते खूं आगे बढ़ाए बे यंतस खुआ देंदा स्तोचा वस्सलाम वालेकुम।
1: बख्शीस अच्छे शहर या रिफ्रेंड पोंगते प्रोग्राम ने खन सुपले बुद्यांग मा जगत कोन दुनी का स्ना बुक दरे सुपे अंतिस टिसुगेन इन चेत पिन अच्छे शहर बाने करना तन टिसो नंबू आकाशवाणी कारगिल का ना फ्रोचपत पे प्रोग्राम सगत पौने फिया था माथोन इंशाल्लाह योंग मी सगत प्रोग्राम में यंता नंबू थुकचेस दे मन पुंग अचान सगा इजन चेस देबूस यजु खुदा ने सखमानी फखरम अस्सलाम वालेकुम।
2: दसन सपा यंते प्रोग्राम गे ने पिन सगेत पानी फे प्रोग्राम फुचि खन पुमेन हकीमा बिनते फातिमा प्रोग्राम प्रोड्यूसर पुमेन गुलजार हुसैन मीडियम वेका दि आकाशवाणी करगिलिन वास्पतु सर दुन सों छेंदुक कसाता प्रोग्राम गे मजायत अशिनो मोनिफिया प्रोग्राम फुचि खन पिन अश्चो नागिस प्रोग्राम प्रोड्यूसर पुमेन गुलजार हुसैन।

0: पर लॉग ऑन करें।
1: पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या india post.gov.in

श्री अमरनाथ जी यात्रा के बेस कैंप का दौरा किया और वहां यात्रा की निजामत और श्रद्धालुओं के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। इंतजामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग में उन्होंने यात्रियों की नकल हमल, सलामती इंतजाम, अकामती सहूलियात, रजिस्ट्रेशन, अमल और यात्रा से जुड़े दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चंदनवाड़ी का भी दौरा किया और वहां भी यात्रा के अहसन इनाकात के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के अहसन इनाकात को यकीनी बनाने की

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की नौजवान मसनूई जहानत रोबोटिक्स और मुल्क में तैयार किए गए सेमी कंडक्टरों का इस्तेमाल करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी में आलमी इनकलाब की कयादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गुजरात में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट यानी ओएसएटी की इफ्तिताही तकरीब पर इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मौका और ये प्रोजेक्ट डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के दो सतूनों के जरिए भारत को जदीद टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज बनाने के नजरिए में एक संगमेल की नुमाइंदगी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवियत मिलने और इश्तराक के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर बहरीन कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार की सिफारिश पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मानसून इजलास के इनेकाद की मंजूरी दी है। वादी के सयाती मुकामात पर इन दिनों लोगों का गैर मामूली रश देखा जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही मुल्की और गैर मुल्की सैलानियों के साथ साथ मुकामी लोग भी बड़ी तादाद में गुलमर्ग कोकरनाग वीरीनाग मुगलबागात यूसमर्ग दूधपत्री और दीगर सयाती मुकामात का रुख कर रहे हैं ताकि सूरज की तमाजत से छुटकारा पाया जा सके। मुकामी लोग वादी के दूर दराज और गैर मारूफ सयाती मुकामात की सैर करने में काफी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। कश्मीर सूबे की पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 14 दिन की गर्माई तातीलात के लिए कल यानी 6 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक स्कूल दोबारा 20 जुलाई पीर को खुलेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने नौजवान तबके में मनुष्यात के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया है। सोरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस बिदत के खात्मे के लिए समाज की हर तबके के एकजुट होने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान श्रीनगर में पार्टी के एक इजलास के दौरान मरहूमा बेगम अकबर जहां की बरसी के सिलसिले में 11 जुलाई को मुनक़द होने वाली तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई है। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना की सदारत में आज जम्मू में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग के दौरान पार्टी के कौमी सदर के जम्मू दौरे के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुलाम अली खटाना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की जामिया तरक्की की वादाबंद है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन कल से शुरू होने वाले जम्मू के अपने दो रोजा दौरे के दौरान मिश्रीवाला में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डोगरा चौक में पंडित प्रेमनाथ डोगरा को खराज अकीदत अदा करेंगे। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा ने दी। उन्होंने आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर सिलसिलावार मीटिंगों के दौरान इस दौरे के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरियों में मुतनाजिया किताबों को शामिल किए जाने की मजम्मत की है। जियारत बाबा हनीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रटसन बीरू में आज मौलूद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसकी सरबराही मौलाना गुलाम मुहैयुद्दीन नकीब ने की। मजलिस में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना मौसूफ ने सीरत पाक के मुख्तलिफ गोशों को बयान किया। अरबी मरकज कमराज के अहतमाम से आज हायगाम सोपोर के इमाम बारगा जैनबिया में एक हुसैनी मजलिस मुनाकद हुई। मजलिस की सदारत मारूफ अदीब शहनाज रशीद ने की। इस मौके पर मरकज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट के अलावा दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। मजलिस के दौरान शुरा ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहदा के तई मंजूम नजराना अकीदत पेश किया। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तिसादी जरायम से मुतालिक विंग ने बैंक में लाखों रुपए फ्रॉड मामले में फर्दी जुर्म दाखिल कर दी है। इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज में क्राइम ब्रांच ने कहा कि यह चार्जशीट चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में दाखिल की गई है जिसमें गलत तरीके से कर्ज हासिल करने की पादाश में कई अफराद के नाम दर्ज हैं। मालूम हुआ कि कसूरवार अफराद ने जारी दस्तावेजात पेश करके साल 2007 में जम्मू कश्मीर बैंक की रेजिडेंसी रोड की शाख से 30 लाख रुपए का सीसी कर्जा और जैनकुट शाख से मजीद 30 लाख

जय हिंद फौजी भाइयों का प्रोग्राम सुनने वाले तमाम सामिन को मेरा प्यार भरा आदाब। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म से एक गीत सुनते हैं जिसे गाए हैं उदित नारायण और साथियों ने। गीतकार है देव कोहली, संगीतकार है राजेश रोशन।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का अगला नगमा मोहब्बत फिल्म से विनोद राठौड़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में सुनते हैं। राकेश नाथ के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम चावन ने।

0: तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? तुम ऐसा नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती।
1: देव, किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ।
0: तुम्हारे बगैर,
1: मेरे बगैर,

भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे,

0: से उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेट गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेट गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण थाने और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरौली, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: विद प्राइम मिनिस्टर अराइवल इन इंडोनेशिया,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद

0: इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलू का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता

0: सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्तानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Norway in the round of 16 match in New Jersey at 1:30 a.m. Indian time tonight. England will face Mexico in Mexico City in the other pre-quarterfinal at 5:30 a.m. tomorrow. In the Wimbledon tennis, American Jessica Pegula defeated compatriot Iva Jovic 4-6, 6-3, 6-1 in the women's singles to reach the quarterfinals in London today. The other match between Czech Republic's Karolina Muchova and compatriot Barbora Krejcikova is underway. In the other round of 16 matches, top seed Arina Sabalenka will face Japan's Naomi Osaka and Switzerland's Belinda Bencic and meet Coco Gauff of the United States later tonight. In the men's singles, the round of 16 match between Serbia's Novak Djokovic and Roman Sofalian of Russia is underway. Later tonight, top seed Yannick Sinner of Italy will take on Japan's Shintaro Mochizuki. The annual Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year with 32,313 devotees offering prayers at the cave Riviat Shrine during the first 2 days of the pilgrimage. 20,145 pilgrims performed darshan at the cave shrine on the second day of the Yatra. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims. On the occasion, the Chief Minister said the Kailash Mansarovar Yatra is not just a religious journey, but a symbol of spiritual awareness, cultural unity and national harmony. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Southwest monsoon intensified across India. Red alert issued for Mumbai. Warning of heavy rain in several states. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and MP Chief Minister Dr. Mohan Yadav lay a foundation stone of 2,500 crore rupee defense manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar begins his six-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup summit clash underway between hosts England and Australia at the Lords. And in FIFA World Cup, Brazil to take on Norway in the round of 16 at New Jersey tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। पूरे भारत में जुनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल्स इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यू जर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और T20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कान हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहां बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नजदीक अदूषी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को